0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य शाम

सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की तिथि 25, तदनुसार 15 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:48 और 45 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। चिंतन में आज आप सुनिए देशभक्ति।
1: देशभक्ति मानव के हृदय में जलने वाली एक ईश्वरीय ज्वाला है, जो अपनी मातृभूमि को अन्य सभी से अधिक प्यार करने के कारण स्वतः प्रज्वलित करती है। ईश्वर का साक्षात विग्रह है हमारा देश। शुभत्व का आधार है हमारा देश। धरती का श्रृंगार है हमारा देश। देशभक्ति करने वालों से परमात्मा वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर पक्षी प्रसन्न होकर कलरव करने लगते हैं। चिड़िया चहचहाने लगती है, कोयल कूकने लगती है, वो उसकी बूंदे स्फटक की भांति चमकने लगती हैं। प्रकृति सूर्य के सुनहरी किरणों से निखर उठती है। हम सभी देशभक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि देश है क्या? केवल कागज पर बना हुआ मानचित्र या धरती का एक भाग? कदापि नहीं। देश केवल भूगोल नहीं है और एक सीमा रेखा के भीतर सिमटा जमीन का टुकड़ा नहीं है। देश तो भूमि के उस अंश पर रहने वाले की कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, हम सब का पालनहार है, हमारी आत्मा।

0: है। देश तो बनता है आपसे, हमसे, यहाँ रहने वाले हम सभी लोगों से। देशभक्ति का मतलब है देश के हित को प्राथमिकता देना, फिर व्यक्तिगत हित के लिए सोचना। हम सभी को यह नहीं सोचना है कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें तो ये सोचना है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। यह भावना हमें देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं। देशभक्ति अपने देश के प्रति गहरी आस्था, निष्ठा और समर्पण का भाव है जो धर्म, जाति, मजहब की सीमाओं से परे होता है। अपने देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, इतिहास और विविधता में एकता को स्वीकार करना, इसका सम्मान करना तथा इस पर गौरवान्वित होना ही देशभक्ति है। देशभक्ति का अर्थ सिर्फ देश से प्रेम करना ही नहीं होता, बल्कि समस्त देशवासियों से प्रेम करना होता है। यह भावना समस्त देशवासियों को एक दूसरे के करीब लाती है और आपसी सौहार्द और सद्भाव विकसित करती है। इसीलिए तो हम सभी गाते भी हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। कहते हैं देशभक्ति यदि सीखना है पशु पक्षियों से सीखें। पिंजरे में बंद पक्षी भले ही परवश हो, परंतु आजादी मिलते ही वह पुनः अपने देश अर्थात वृक्षों पर जा बैठती है। जंगलों में रहने वाले पशुओं को हम जंजीरों में बांधकर पराधीन बना लें, परंतु वह भी बंधन से मुक्त होते ही सीधा जंगल अर्थात अपने देश की ओर भागता है। धनोपार्जन तथा जीविकोपार्जन के लिए अपना स्वदेश, अपनी मातृभूमि छोड़कर विदेशों में बसने वाले तन से तो वहाँ रहते हैं, परंतु उनका दिल सदैव अपनी मातृभूमि में ही बसता है, मानो वह अपनी माँ से अलग हुए हों। कहते भी हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और महान है। मातृभूमि भी तो माता का ही रूप है, जहाँ हम हंसते खेलते हुए बड़े होते हैं। अपनी माँ की तरह ही हमारी मातृभूमि भी हमारे लिए वंदनीय है। वर्षों बाद अपने स्वदेश लौटने पर अपने देश के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखने वाले लोगों को अपनी मातृभूमि पर पैर रखते ही मातृभूमि को नमन करते और चूमते हुए आपने देखा होगा। किसी कवि ने देशभक्ति की इस भावना को व्यक्त करते हुए लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देशभक्ति की भावना जन्म से ही पैदा होती है और मरने पर भी नहीं मरती। देशभक्ति कोई प्रदर्शन नहीं है, न ही यह गरीबी अमीरी से प्रभावित या पारिभाषित होती है। यह तो एक आंतरिक आवेग है जो भावना के ज्वार के साथ उमड़ पड़ता है। देशभक्ति देश के प्रति जीने तथा उसकी सुरक्षा के लिए बलिदान तक देने की भावना है। देशभक्ति एक ऐसी प्रभावशाली शक्ति है जो लोगों के देश प्रेम की भावना को सशक्त बनाती है। देश हित में किया गया कोई भी कार्य देशभक्ति ही कहलाता है। देश की रक्षा हेतु सरहदों पर शहीद होने वाले तो सच्चे देशभक्त होते ही हैं, परंतु बाल्यावस्था से ही उनमें देशभक्ति की भावना भरकर उन्हें देश सेवा की प्रेरणा देने वाले उनके माता पिता तथा उनके परिवार एवं अन्य मित्र संबंधी भी तो सच्चे देशभक्त होते हैं। देशभक्ति और ईश्वरीय भक्ति समतुल्य है। जैसे ईश्वर को सर्वोपरि मान, अपना सर्वस्व समर्पण करना ही सच्ची ईश्वरीय भक्ति है, वैसे ही देश को सर्वोपरि मान, प्राण की आहुति देकर भी देश की रक्षा करना सच्ची देशभक्ति है। एक पुष्प की भावना के माध्यम से कवि की कल्पना ने देशभक्ति की अद्भुत व्याख्या करते हुए लिखा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठल आऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, इसमें आपने सुना देशभक्ति। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं। इसमें आप सुनिए वार्ता पोषण वाटिका के लाभ।
2: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे घरों के आसपास जो भी थोड़ी बहुत खाली जमीन उपलब्ध है, उसमें योजनाबद्ध तरीके से आप साग सब्जियां और फल उत्पादन कर सकते हैं, और इसे ही किचन गार्डन या पोषण वाटिका, गृह वाटिका हम कहते हैं। पोषण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति जिन फलों से, जिन सब्जियों से होती है और जहां पर उनको हम लगाते हैं, उसे ही पोषण वाटिका का नाम देते हैं। वैसे तो संतुलित आहार के लिए प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को कुछ हरी सब्जियां, कुछ फल और कुछ अनाज, दूध, दही का प्रयोग करना चाहिए। तो ये साग सब्जियां जो हैं और फल जो हैं, जो कि छोटे क्षेत्र में हो सकते हैं, उन्हें आप अपने पोषण वाटिका में लगा सकते हैं। पोषण वाटिका के कुछ लाभ और कुछ उद्देश्य भी होते हैं।

0: हैं। परिवार को पोषण सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनकी आवश्यकता अनुसार, पसंद इच्छा अनुसार संतुलित भोजन इससे उपलब्ध होता है। फल और सब्जियां विटामिन ए और खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। गृह वाटिका द्वारा हम भोजन में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। घर के समीप की खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग हो पाता है। घर के उपयोग से प्राप्त व्यर्थ जल एवं भोजन अवशेषों का सदुपयोग हो पाता है। वर्ष भर स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता युक्त सस्ते फल एवं सब्जियों की सुलभता बनी रहती है। रसायन सहित सब्जियों के उत्पादन एवं सेवन को बढ़ावा मिलता है। गृह वाटिका लगाकर महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वयं उगाई गई सब्जियां बाजार की फल और सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट लगती है। अब बात आती है कि गृह वाटिका का निर्माण हम कैसे करें। तो गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चयन करें जहां पर कम से कम 6 घंटे से अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त हो। जहां तक संभव हो गृह वाटिका का निर्माण घर के नजदीक किया जाए ताकि इसका प्रबंधन भलीभांति किया जा सके। गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पानी का स्रोत बराबर बना रहे और जहां किसी भी प्रकार छाया का पड़ाव नहीं हो, यानी कि छाया वहां पर न पड़ती हो। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि की मृदा जांच प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर भी करानी चाहिए। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि समतल होनी चाहिए क्योंकि ढलवा होने पर पोषक तत्वों के क्षय होने की आशंका होती है। अब बात ये आती है कि इसमें किस किस तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। तो खरीफ मौसम वाली सब्जियां जो हैं जून जुलाई के महीने में आप लगावें। इसमें भिंडी, लौकी, करेला, तोरई, बैंगन, टमाटर, ग्वार, लोबिया, मिर्च, अरबी इत्यादि है। रबी मौसम में जो सब्जियां लगाएंगे वो सितंबर अक्टूबर माह में लगाते हैं। इस समय बैंगन, सरसों, मटर, चना, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, शलजम, फूलगोभी, बंद गोभी आदि सब्जियां होती हैं। गृह वाटिका हेतु जो जमीन की तैयारी होती है वो आप यदि क्षेत्र बड़ा है तो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, नहीं तो कुदाल या खुरपी से उसका प्रबंधन आप कर सकते हैं। कंकड़ पत्थर उसमें से हटा दें, गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करें। मिट्टी भुरभुरी रहती बना लें और उसमें कार्बनिक खाद और जीवांश तत्वों से भरपूर मिट्टी है उसमें ही गृह वाटिका लगाने का आप प्रयास करें। और आवश्यकता अनुसार अपने क्षेत्र को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लें। प्रत्येक क्यारियों में अलग अलग सब्जियां आप लगावें, जैसे किसी में आपने प्याज लगाया, किसी में लहसुन लगाया, किसी में मटर लगा दिया, किसी में टमाटर लगा दिया, किसी में भिंडी, लौकी। तो इससे ये होगा कि आपको जो है हर तरह की सब्जी उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ
1: कृषि सूचना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता पोषण वाटिका के लाभ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अब हिंदी में समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने

0: फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं संवेद स्वर में देश वंदना।

प्रत्येक दिवस का प्रातःकाल हमारे लिए एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत से लवरेज होता है, भरा होता है। मन में सदैव एक ही बात आती है कि आज का दिन बस खुशियों से भरा हो, और इसी खुशी को पाने के लिए हम अपने ईश्वर की इबादत वंदना करते हैं।

हमारा मन एक मंदिर है, इसमें ईश्वर की भक्ति से शक्ति मिलती है, इसलिए मन से की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है।

परमपिता परमेश्वर, जिनके अनेक रूप और अनेक नाम होते हैं, कोई उन्हें खुदा कहता है तो कोई गॉड। तो आइए सच्चे और अच्छे मन से उनकी वंदना करें।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ, मुख्य स्वर है सुरेश वाडेकर का।

श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस अवसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल कार्य है, तथापि उचित तो ये था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण, शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत, विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल

ते भारत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को चले जाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर था सुरेश वाडेकर का। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य सूचनाएं। इसमें आज आप सुनिए भेंटवार्ता, दांत निकालने के समय होने वाली परेशानियां और ध्यान देने योग्य बातें। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर कौशल कुमार और भेंट करता है चंद्रमणि कुमार सिन्हा।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित मेहमान हैं डॉक्टर कौशल कुमार। आप पटना के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ हैं। आज का हमारा विषय है दांत निकालने के वक्त होने वाली परेशानियाँ और ध्यान देने योग्य बातें। तो डॉक्टर साहब, ये विषय ही बहुत कुछ बता देता है, तो आप कृपया हमारी श्रोताओं के लिए इन परेशानियों के बारे में बताएं और उसका समाधान कैसे।
2: जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ कि इस विषय में क्या करना है। देखिए, दांत नॉर्मली, पहला सवाल तो ये कि दांत निकालना है तो दांत क्यों निकालना है। कोशिश ये करें कि ना निकालें, जरूरत ना पड़े। तो दांतों की सफाई, इस विषय को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दांत निकाल लिया है, किसी वजह से आप दांत निकाल चुके हैं और अब उसके बाद की जो प्रक्रिया देख रेख की है उसके विषय में ये है कि सबसे पहला चीज़ कि उसके मसूड़े से जो ब्लड, जहाँ से दांत निकाला गया है वहाँ पर खून आ रहा होता है, तो उसे हम क्या करते हैं कि गौज यानी कॉटन पैक दे करके 1 से 1.5 घंटे तक दबाकर रखने की सलाह देते हैं। और 1.5 घंटे के बाद जब रुई को फेंक देना होता है तो हम पेशेंट को, मरीज को ये जरूर कहते हैं कि आप आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करें। वो इसलिए कि

0: की टेम्परेचर की वजह से वहां पर वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि आपके जो खून आने की प्रक्रिया, वहां थक्का बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जिससे कि खून आना बंद हो जाएगा। और अगले 24 घंटे तक हमारी कोशिश रहती है कि मरीज ठंडा और नरम खाने का सेवन दूसरी तरफ से करें, जिधर से दांत न निकाला गया हो। इसके अलावा कुछ दवाइयां दी गई रहती हैं, जिसमें कि कुछ पेन किलर्स होते हैं दर्द के लिए, चूंकि निकालने के बाद वो एक तरह का ट्रॉमा होता है, एक तरह की इंजुरी होती है, तो पेन होने की पूरी संभावना रहती है। तो उस कंडीशंस में पेन किलर्स जरूर खाना होता है, साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स चलती हैं, और 24 घंटे तक ठंडा और नरम खाना होता है। 24 घंटे के बाद हम पेशेंट को जरूर कहते हैं कि फास्टर हीलिंग के लिए और पॉजिटिव बैक्टीरिया बनाने के लिए उस ओरल कैविटी में सुषुम पानी में नमक देकर के दिन भर में 3 से 4 दफे गुलगुला करना होता है। तो ये बेसिक है
1: जी,
0: जो आफ्टर एक्सट्रैक्शन आपको केयर करना है। अगर आप इतना केयर करते हैं तो नॉर्मली आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। और मैं अभी आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि जब आपने एक बार दांत एक्सट्रैक्ट करवा लिया है और अगर आपको लगता है कि वो जगह खाली हो गई है, तो खाली छोड़ना नहीं है, वहां फिर से वापस री कुछ न कुछ प्रोस्थेसिस करा लेनी है। प्रोस्थेसिस मतलब दांत लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो या तो जो भी सस्ता से महंगा हर तरह का दांत अवेलेबल है जरूर लगाएं, क्योंकि आपका वो आर्च डिस्टर्ब हो जाता है, और एक बार आर्च डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपके अगल बगल के दांत फिर से खराब होने शुरू हो जाएंगे, और पता चला कि आप काफी अच्छे वाले डेंटल पेशेंट हो गए हैं
1: जी। यहाँ पर एक प्रश्न यह मैं पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे होते हैं विशेषकर, तो उनके खेल कूद के दौरान कई मर्तबा ऐसा देखा जाता है कि दांत टूट जाता है
0: जी,
1: तो उस समय क्या सावधानियों को बरता जाए?
0: जी जी, अमूमन सामने के दांतों में, मैंने भी कई पेशेंट्स में देखा है, अक्सर हाँ मैं देखता रहता हूँ कि सामने के दांत में बच्चे बॉल से खेल रहे होते हैं या किसी बैट से चोट लग गई, तो उस तरह के चोट में अगर सामने का दांत टूटता है तो देखिए दो तरह के दांत होते हैं, एक तो दूध वाला दांत होता है, एक परमानेंट दांत होता है। तो अगर 9 साल की उम्र के बाद, नॉर्मली 9 साल की उम्र के बाद लगभग परमानेंट आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे तो 6 साल में शुरू हो जाते हैं। तो अगर परमानेंट टूथ है तो जैसे परमानेंट टूथ टूटता है तो कोशिश करें तुरंत नजदीकी किसी दंत चिकित्सक से संपर्क करें। अभी हमारी मॉडर्न डेंटिस्ट्री इतनी एडवांस जरूर है कि उस टूटे हुए टुकड़े को भी जोड़ा जा सकता है
1: जी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई।
0: और अगर डेसिडुअस यानी दूध वाला दांत टूटता है तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दांत चूंकि दूध का है और वापस 2-3 साल के अंदर में टूट करके वो नया फ्रेश निकलना होता है, तो उस दांत के लिए ध्यान रखना तो ऑब्वियस है, निहायत जरूरी है, चूंकि एस्थेटिक हर उम्र में कंसर्न होता है, और साथ में उसे कोई तकलीफ खाने के दौरान ना हो। तो इस दोनों विषयों को ध्यान में रखकर किसी भी दंत चिकित्सक से मिले, उसकी सुविधा उपलब्ध, बहुत आराम से वो इस चीज को सॉल्व आउट कर सकते हैं।
1: अच्छा, अब बुजुर्गों में भी कई बार होता है कि दांत टूट जाता है, ज्यादातर दांत टूट जाते हैं तो उन्हें दांत लगवाना होता है।
0: बिल्कुल।
1: और कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिना दांत लगाए ही, जो कृत्रिम दांत होते हैं, बिना उनके उपयोग के ही वो खाना स्टार्ट कर देते हैं
0: जी, जी।
1: तो उससे मसूड़ों पर भी मेरे विचार से दुष्प्रभाव तो जरूर पड़ता होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो उससे क्या मतलब कि बचा जाए, कैसे किया जाए?
0: उम्र बढ़ने के साथ में शरीर थकता है, बड़ा मुख्य विषय है। पेट भी कमजोर होता है जो कि हमारे पूरे शरीर का मुख्य मशीन है, और उस वक्त हमें खाना को चबा कर खाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और उसी दौरान में अगर हमारा दांत सहयोग छोड़ देता है तो हमारे पेट पर ठीक उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। पेट को जहां आराम चाहिए होता है, उल्टा वो डबल काम शुरू कर देता है। तो दांत का होना एक खास उम्र के बाद निहायत जरूरी है। तो पहली चीज ये कि दांत जरूर लगवाएं। दूसरी चीज, अगर दांत टूट जाता है किसी वजह से तो कोशिश करें कि आप नजदीकी दंत चिकित्सक से मिलें। निकालने लगाने वाला दांत यानी कि रिमूवेबल प्रोस्थेसिस भी होती है, फिक्स दांतों की भी प्रक्रिया होती है, जिसमें आपकी सक्षमता हो उस दांत को आप लगवा जरूर लें, ताकि खाने में सहूलियत रहे, चबाने में सहूलियत रहे, और उससे आपके आपकी उम्र पे बहुत ज्यादा और आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है
1: जी। डॉक्टर कौशल कुमार, आप हमारे स्टूडियो आए और दांतों के निकालने के वक्त होने वाली परेशानियां और उससे संबंधित बातों को आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। शुक्रिया, थैंक यू।
2: स्वास्थ्य सूचना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, दांत निकालने के समय होने वाली परेशानियां और ध्यान देने योग्य बातें। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर कौशल कुमार और इनसे इस विषय पर बातचीत कर रहे थे चंद्रमणि कुमार सिन्हा। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल। प्रादेशिक लोक संगीत आप सुन सकेंगे 7:15 पर और शास्त्रीय संगीत में सत्यनारायण सिंह का तबला वादन आप सुनेंगे 7:25 पर।

0: उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा 9:10 पर और रसमंजरी के अंतर्गत फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी वार्ता और सुगम संगीत आप सुन सकेंगे 10:45 पर। 11:00 फिल्म संगीत होगा। दोपहर 12:00 सुनिए बिहार का लोक संगीत। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरों का सफर। देशगान होगा 1:20 पर। 1:25 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम और 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुन सकेंगे 4:30 पर और भोजपुरी कार्यक्रम आरती का प्रसारण होगा 5:30 पर। भोजपुरी बुलेटिन आप सुनेंगे 6:05 पर। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होगा 6:30 पर और 7:00 आप सुनेंगे खेती गृहस्थी का प्रसारण। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:35 पर। और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे सोमवासरीय संगीत सभा। फिल्म संगीत होगा रात्रि 10:30 पर। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 50वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेऽस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिक रूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखर सम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिक संकटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतन प्रौद्योगिकीनां द्रुत विकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्त

0: ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांसदेशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांसदेशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रममिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30+2000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिमबुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इण्डिगो एयरलाइन्स् संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानम् आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊ नगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26+2000 वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानाम् आईसीसी 20+20 विश्वचषकक्रीडायां बर्मिंघम् नगरस्य एज्वेस्टन् नगरे ग्रूपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तानदलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज

0: भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डबरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंगहम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हालचाल। सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश दुनिया के इतिहास के बारे में और क्या खास है आज के दिन और बातें योग से जुड़ी। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं क्या खास है आज के दिन में भारतीय इतिहास में। जी हां, 15 जून भारतीय इतिहास में खास है क्योंकि आज के ही दिन 1947 में इसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनातुबो में 20वीं सदी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। और आज के दिन की खास बात श्रोताओं, तो हम आपको बताएं आज के ही दिन 1844 में चार्ल्स गुडियर को रबर के वाल्मीकिकरण का पेटेंट मिला था। 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत आज के ही दिन हुई थी। 1752 में आज के ही दिन यानी 15 जून वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग के प्रयोग से साबित किया था कि आकाशीय बिजली भी एक प्रकार की विद्युत है। और श्रोताओं, हम बात करते हैं आज कौन सा दिवस है। जी हां, 15 जून को हम मनाते हैं मुख्य रूप से विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। जी हां, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। विश्व बुजुर्ग

व्यार जागरूक दिवस यह दिन बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार और उपेक्षा को रोकने व उनके अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। विश्व पवन दिवस भी हम लोग मनाते हैं, जहां वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा की क्षमता और पर्यावरण संरक्षण में इसके योगदान को उजागर करने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है। तो श्रोताओं, जानकारी अभी ढेर सारी है, बातें भी ढेर सारी है, पर सुनते हैं इस गाने के बाद।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे विश्व बुजुर्ग दिव्यार जागरूकता दिवस पर। जी हाँ, हर साल 15 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय शोषण या उपेक्षा के प्रति समाज को जागरूक कराना और उन्हें उनका उचित सम्मान व अधिकार दिलाना। और श्रोताओं, अब हम बात करते हैं योग से जुड़ी। दिमाग और याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए नियमित योगासन, प्राणायाम और ध्यान सबसे प्रभावी प्रकृति उपाय है। ये मस्तिष्क में ऑक्सीजन और रक्त के प्रभाव को बढ़ाते हैं, न्यूरॉन्स को मजबूत करते हैं और तनाव कम करके एकाग्रता में सुधार लाते हैं। जी हाँ, याददाश्त और दिमागी सेहत के लिए सबसे जरूरी योगासन, श्रोता हम आपको बताते हैं, प्राणायाम है, जो श्वास पर नियंत्रण करता है। भ्रामरी प्राणायाम यमन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे अभ्यासों में से एक है। अनुलोम विलोम या नारी शोधन करता है, जिससे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में संतुलन बनता है और नियंत्रण होता है। कपालभाति मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करता है और ताजे ऑक्सीजन का संचार करता है। तो श्रोताओं, योग जो है उसे अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें, क्योंकि योग संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही सहायक और अचूक जीवन शैली है। ये केवल शरीर के लचीलेपन को ही नहीं, उसके आपके हृदय गति, रक्तचाप, ये सबको भी नियंत्रित करता है और मानसिक तनाव को तो कम करता ही है। तो इस पर जरूर ध्यान दें और अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें, नियमित योगासन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हाल चाल अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए प्रादेशिक लोक संगीत। कलाकार हैं बालेश्वर प्रसाद और साथी।

बानी अरे धर्म के खातिर राजा छोड़े राजधानिया धर्म नहीं छोड़े रे राजा रानिया।

ना छोड़ा हमने ना छोड़ा कहे अम्मा हमके ना छोड़ा हमके ना छोड़ा अम्मा

Chora,

रे अरे बगिया में भवला बिहार मांगला है, अरे बगिया में भवला बिहार मांगला है अंगनैया।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक लोक संगीत, कलाकार थे बालेश्वर प्रसाद और साथी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में तबला वादन, ताल है तीन ताल, कलाकार है सत्यनारायण सिंह और सारंगी पर संगत कर रहे हैं रोशन अली।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तबला वादन, ताल था तीन ताल, और कलाकार थे सत्यनारायण सिंह। सारंगी पर संगत कर रहे थे रोशन अली। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।

0: KIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: Oh.

0: AIR at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, अगले प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
7: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध

0: और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी, प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.com nta.nic.in से

0: डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के DNA में शामिल, वीर अर्जुन ने PM के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने

0: प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच। हिंदुस्तान लिखता है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। यूएस एंड ईरान रीच अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड लिफ्ट यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while U.S. West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Komudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
2: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हममनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं जी सरबराह 7 कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जेवर में नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। अमेरिका और ईरान ने 107 दिन से जारी जंग खत्म करने और आबनाए हुरमुज खोलने के मकसद से एक समझौते को कतई शक्ल दी है। आबनाए हुरमुज एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से आलमी तेल सप्लाई का पांचवा हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल पर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस अमन मुआहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, जहां ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद जुमे को खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत पूरे खित्ते में अमन सलामती कायम होगी। इस मुआहदे में अमरीका और ईरान से कहा गया है कि वो ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी और उसकी इंतहाई ताकतवर यूरेनियम के खात्मे पर 60 दिन के अंदर अंदर मुजाकरात करें। ईरान की कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि लिबनान समेत सभी महाजों पर फौजी कार्रवाई आज रात से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी आ गई है। ब्रंट खाम तेल में आज सुबह 4% की कमी वाकई हुई, जबकि अमेरिका का वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 4.6% से भी ज्यादा गिर गया। इधर एशिया में स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। दुनिया के रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते का खैर मकदम किया है और इसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है, जिससे मगरबी एशिया में अमन की बहाली में मदद मिल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा

0: स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी स्लोवाकिया के सदर पीटर पिरिगिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद स्लोवाकिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रतिस्लावा पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि ये दौरा भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का एक अहम मौका फराहम करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के नए मौके तलाश करने में मददगार साबित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि वो स्लोवाकिया के सदर पीटर पिलिगिरिनी और वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको के साथ सूदमंद मुज़ाकरात के मुंतजिर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का इस मुल्क के लिए ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म की यह दौरा अप्रैल 2025 में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया के दौरे के बाद हो रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल रात राजधानी ब्रतिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के वजीर खारजा जुराज ब्लेनर ने शानदार खैर मकदम किया। किसी भारतीय वजीर आजम का स्लोवाकिया का यह पहला सरकारी दौरा है। ब्रतिस्लावा पहुंचने पर गैर मुकीम भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। स्लोवाकिया के मौसीकारों ने वजीर आजम के पहुंचने पर वंदे भारत वंदे मातरम की धुन बजाई। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति एम पलुरती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू हो रही है। तीन रोजा कॉन्फ्रेंस में G7 के सभी रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बर्तानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। अरकान के अलावा फ्रांस ने आउटरीच शराकतदार मुल्कों की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, जनूबी कोरिया, कतर, सऊदी अरब, मुल्क शाम, यूक्रेन और मुत्तहदा अरब अमारात को भी मदऊ किया है। ये 13वां मौका होगा जब भारत एक शराकतदार मुल्क की हैसियत G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत से आलमी जोग्राफियाई सियासत में भारत का अहम रोल उजागर होता है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, माशी गैर यकीनी सूरत हाल और नई टेक्नोलॉजी की तेजी से इर्तका के चैलेंज दरपेश हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जैसे ही इजलास शुरू होगा तो आलमी अदम तवाजुन को कम करना मेजबानी करने वाले मुल्क की G7 सदारत सबसे अहम तरजीह बन जाएगा। सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरकारी फ्रेमवर्क के मुताबिक G7 के रहनुमा जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस, बैन अलाक्वामी अमन और सलामती, बाहमी इख्तिसादी तरक्की और अहम आलमी बहरान पर तबादले ख्याल करेंगे। ये तबादले ख्याल बंद कमरों में होंगे जो आज से शुरू हो रहे हैं। सरबरा इजलास में भारत की शिरकत आलमी जनूब की तरजीहत और तशवीश को उजागर करने के लिए एक मौका फराहम करेगी, जबकि अहम आलमी मसाइल पर भी मुजाकरात होंगे। फ्रांस से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में वाकई नोएडा बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों की खिदमत आज से शुरू हो गई हैं। जेवर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए पहली परवाज ने थोड़ी देर पहले उड़ान भरा। इस परवाज में MLA धर्मेंद्र सिंह 20 खवातीन समेत 172 किसानों के साथ हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीन एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई थी। लखनऊ पहुंचकर ये किसान वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इंडिगो एयरलाइन की पहली परवाज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के लिए सुबह 7:05 पर रवाना हुई। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली बाकायदा कमर्शियल परवाज चलाई जाएगी।
3: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का इफ्तिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी तकरीबन 3300 एकड़ जमीन हासिल की गई है। पहले मरहले में 1,20,00,000 मुसाफिरों की सलाहियत वाले इस एयरपोर्ट से मुस्तकबिल में 22,50,00,000 मुसाफिरों को सहूलियत फराहम की जा सकती है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी रियासतों के लिए एक नई हवाई कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो की परवाजें लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज्यादा शहरों के लिए शुरू होने वाली हैं। दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी जल्द शुरू होंगी। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए हवाई अड्डे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें 90 जनरल और 10 डबल डेकर बसें शामिल हैं। लखनऊ से खबरनामे के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
0: इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट तिब्बी तालीम के दाखिले के लिए

0: नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एनटीए की सरकारी वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराए जाएंगे, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगे। एनटीए ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते की तफसीलात की तस्दीक करें। उसने उम्मीदवारों को ये भी मशवरा दिया है कि वह हिदायत पर अमल करें और साथ ही इतिलानामे पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। भारत में पिछले 12 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के वसूलों पर मबनी काबिले जिक्र तब्दीलियां हुई हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब किसानों ख्वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए गए। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के मौजू के उन्वान से एक खसूसी फीचर नशर कर रहा है। आज हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के तसव्वुर के साथ जदीद बुलंद ढांचा तामीर करने के सरकारी इकदाम पर नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: किसी मजबूत और जदीद मुल्क की तामीर आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे पर मबनी होती है। पिछले 12 साल में भारत ने यकसर तब्दीली का एक बेमिसाल सफर तय किया है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे पर सरकारी अखराजात में 6 गुना इजाफा किया गया है। इस तरह 2014-15 ये अखराजात 2 लाख करोड़ रुपए के थे, जबकि रवा माली साल में ये अखराजात 12.2 लाख करोड़ रुपए के हो गए। मुल्क के शहरी ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाब लाया गया। भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क को तकरीबन 5 गुना तौसी दी गई। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली की अलीशा ने, जो दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करती हैं, अपने सफर के तजुर्बे के बारे में बताया।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कौमी शाहराह नेटवर्क में इजाफा करके इसे 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। रेलवे के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां नुमाया हैं। भारतीय रेलवे से मुतालिक बजट में तकरीबन 9 गुना इजाफा कर दिया गया है, जिससे इस पूरे नेटवर्क में जदीदकारी की गई है और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की गई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए लखनऊ से वंदे भारत की एक मुसाफिर पूजा ने कहा कि ये ट्रेन बहुत आरामदेह है, जिससे वक्त की भी काफी बचत होती है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि सफर करने में टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे भी पसंद आए, क्योंकि इसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 19वां मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल MIFF आज से शुरू हो रहा है। शाम को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में फिल्म फेस्टिवल की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जबकि सुबह से ही फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस साल मुकाबला जाति जुमरे में 52 बैन अल-अक़वामी और 92 कौमी फिल्मों में समेत कुल 144 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 13 मुल्कों के फिल्म साज फिल्म फेस्टिवल में नुमाइंदगी कर रहे हैं। गैर मुकाबला जाति जुमरे में शिरकत करने वाले 46 मुल्कों की 106 बैन अल-अक़वामी फिल्मों और 96 कौमी फिल्मों समेत कुल 202 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फौजदारी तहकीकाती महकमे ने तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी से 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की है। ये पूछताछ उनसे पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के जाली दस्तखत के एक केस में उनकी मुबैना तौर पर मुलविस होने के सिलसिले में की गई है। बर्मिंघम में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कल रात रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे, जिसमें स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आकाशवाणी की खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नष्ट होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे योगा से मुतालिक प्रोग्राम नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन सेहत और योगा से मुतालिक इस मौजू पर अपने सवाल टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं 01123314

0: 01132717116 01132717106। ये भी खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे फ्रांस को अहमियत के साथ शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने आलमी सरमायाकारों महققین और सनअतकारों को भारत के साथ मिलकर काम करने की दावत दी। भारत के खलाई शोबे में नुमाया तब्दीली ये हमारे कौमी शऊर का अहम हिस्सा बन चुकी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वजीर आजम मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जोर में नोएडा बैन अलाकवामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तहान का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये इम्तहान इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंगहम में एजबेस्टन में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 484.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
4: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
3: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज गया जिले के खिजर सराय में 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश में मत्स्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आज पटना के मीठापुर में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ और भोजपुर के वानासुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का होगा शिलान्यास। प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को वास भूमि का अधिकार और बंदोबस्ती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आज से बसेरा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। अब समाचार विस्तार से। गया जिले के खिजरसराय में आज प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी संयुक्त रूप से इस केंद्र का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी मौजूद रहेंगे। यह प्रौद्योगिकी केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र के MSME परिदृश्य को बदलने में अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रौद्योगिकी केंद्र से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 20 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाले इस केंद्र में उत्पादन ब्लॉक, प्रशिक्षण ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक समेत कई खंड बनाए जाएंगे। यह केंद्र गया जी, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और मुंगेर जिलों में MSME के लिए कार्य करेगा। यह केंद्र सामान्य और भारी अभियांत्रिक तथा वस्त्र परीक्षण के प्रमुख क्षेत्रों की जरूरत को पूरा करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में मत्स्य व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़ी दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पटना के मीठापुर स्थित मत्स्य विकास भवन में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड NFDB के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यालय में प्रदेश में मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में रफ्तार मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री आज ही भोजपुर जिले के वानासुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस पार्क में प्रदेश की नवीनतम मत्स्य पालन तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मत्स्य उत्पाद और उत्पादकता में गुणात्मक बढ़ोतरी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2.5 लाख घरों की छत पर 20 नवम्बर तक सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना में एक कार्यक्रम में श्री चौधरी ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के घर की छत पर लगे सोलर पैनल से 125 यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा, राज्य सरकार उनसे बिजली खरीदकर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आज से अभियान बसेरा के दूसरे चरण की शुरुआत करेगा। 21 जून तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन परिवारों तक वास भूमि का अधिकार पहुंचाना और भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र निर्गत करना है। इसके तहत सुयोग्य श्रेणी के उन वंचित सर्वेक्षित परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिन्हें अभी तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही सरकारी भूमि जैसे गैर मजरुआ खास और आम भूमि पर बसे पात्र परिवारों की जांच कर उन्हें भी योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार ने भूमि विवादों के तेजी से निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायाधिकरण में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश में पर्यटन के प्रसार के लिए विभिन्न पर्यटक स्थलों तक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की सुविधा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। इसके तहत माम उंडेश्वरी, करकटगढ़ जलप्रपात और राजगीर के पर्यटन स्थलों के लिए अनुदानित दर हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही वाल्मीकि नगर के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को पर्यटकों के लिए वायु सेवा भी जल्द शुरू होगी। प्रदेश के सभी प्रखंडों में कल से 3 दिनों तक प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों

को इस संबंध में पत्र भेजा है। इस शिविर में आयुष्मान भारत, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, दिव्यांग कल्याण योजना समेत केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के लिए अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे। आम लोगों की मदद के लिए नोडल अधिकारी के साथ कर्मचारी और स्वयं सेवक भी तैनात रहेंगे। मुख्य सचिव के अनुसार पंचायत और नगर निकाय स्तर पर होने वाले सहयोग शिविर नियमित रूप से जारी रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नीट यूजी समेत विभिन्न परीक्षाओं के फर्जी प्रश्न पत्र बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विभिन्न परीक्षाओं में फर्जी प्रश्न पत्र बेचने वाले गिरोह के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि यह गिरोह सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल कर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से प्रश्न पत्र के नाम पर ठगी भी करता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सरकार के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है।

0: क्लैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में मॉनसून अभी मुजफ्फरपुर के आसपास रुका हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में इसके पूरे प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय और नवादा समेत आसपास के जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है।
2: दिनांक 15 जून राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सासाराम में सबसे अधिक 76.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं किशनगंज के गलगलिया में 75.8 और रोहतास के डेहरी में 67.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश की सभी नदियों से बालू खनन पर आज से रोक लगा दी गई है। यह रोक 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनीष कुमार मीणा ने बताया कि मॉनसून के चलते सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने और थाना स्तर पर इसकी निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने बताया कि बंदी की अवधि में बालू की मांग को पूरा करने के लिए करीब 30 लाख CFT बालू का भंडारण किया गया है। लोक भवन ने प्रदेश में नव सृजित 211 नए डिग्री कॉलेजों में पद स्थापित प्राचार्य और बर्सर के तबादले पर रोक लगा दी है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भेजे पत्र में अगले आदेश तक स्थानांतरण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से नवसृजित महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, ऐसी स्थिति में स्थानांतरण के किसी भी आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस वर्ष की थीम है पवन ऊर्जा, महत्वाकांक्षा से गतिशीलता की ओर। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए ग्रुप 1 के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 171 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रनों पर ऑल आउट हो गई। 5 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मद निषेध सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों के उपद्रव पर लिखा है, पाटलिपुत्र जंक्शन पर परीक्षार्थियों का बवाल, 500 अज्ञात पर केस दर्ज, 6 को हिरासत में लिया। इसी खबर को तरजीह देते हुए आज अखबार लिखता है, पटना के 554 केंद्रों पर ली गई सिपाही भर्ती परीक्षा, 7 अभ्यर्थी गिरफ्तार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बदलेंगे भवन निर्माण के नियम, 24 मीटर तक बिल्डिंग को सेल्फ सर्टिफिकेशन से मंजूरी। दैनिक भास्कर लिखता है, पीके शाही का महाधिवक्ता पद से इस्तीफा। प्रभात खबर ने T20 महिला विश्व कप से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, दीप्ति के पंजे के आगे पाकिस्तान का सरेंडर। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, 1512 करोड़ की सौर ऊर्जा परियोजना का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज गया जिले के खिजरसराय में 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश में मत्स्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आज पटना के मीठापुर में राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारम्भ और भोजपुर के वाणासुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का होगा शिलान्यास। प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को वास भूमि का अधिकार और बंदोबस्ती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आज से बसेरा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: Bye. बाढ़ से बचने के उपाय। आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च

0: बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: से उतर कर हिला गया है फलक से उतर कर। ये श्री देखे नहीं सके। मेरे दिल में उठने लगी गुदगुदी सी,
1: कहना मिश्रा भाई,
0: मेरे दिल में उठने लगी गुदगुदी सी, मेरे दिल में उठने लगी गुदगुदी सी, किसी का पया मेरे साला गया है, किसी का पया में साला गया है। यहाँ जिक्र-ए-हुस्न-ए फिर देखें, उभरता नहीं मेरा अक्स-ए-मुहब्बत,

0: दीद ताब सवाल आ गया है तेरे दीद का। आखिरी शेर देखे, अजब रंग है आज बस में सुखन का,
1: अजब रंग,
0: अजब

0: दीदाब सवाला गया है तेरे दीद का। आखिरी शेर देखें, अजब रंग है आज बस में सुखन का, अजब रंग है आज बस में सुखन का, अजब रंग है आज बस में सुखन का, सुखन वर कोई बा कमाला है, सुखन वर कोई बा कमाला गया है, सुखन वर कोई। मौका से बात करें, सबे हिजर मुस्ताक कैसे कटेगी, सबे हिजर मुस्ताक कैसे कटेगी, सबे हिजर मुस्ताक कैसे कटेगी, सरे शाम दिल को मलाला आया है, सरे शाम दिल को मलाला गया है, जहां जिक्र हुस्न जमाला गया है, तस्वीर में तेरा ख्याल आ गया है।
1: बहुत खूब, बहुत अजब रंग है आज बज़्म में सुखन का, सुखनवर कोई बा कमाल आ गया है। तो आज के महफिल सुखन में भी लगता है इसी तरह के बा कमाल शोरा इकराम हाजिर हैं। तो अब मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब नईम सबा साहब को कि वो अपने अशार पेश करें।
2: एक गजल के चंद अशार पेश खिदमत है, मतलब हाजिर है। आज भाई नहीं है भाई का, आज भाई नहीं है भाई का, ये जमाना है बेवफाई का, आज भाई नहीं है भाई का, ये जमाना है बेवफाई का, और दुश्मनों को खुशी मिली ऐसी, दुश्मनों को खुशी मिली ऐसी, दौर चलता रहा मिठाई का, दौर चलता रहा मिठाई का। और ये शेर तवज्जो चाहूंगा, बेटियां घूमती हैं बेपर्दा, बेटियां घूमती हैं बेपर्दा, ये अंजाम बेहयाई का, बेटियां घूमती हैं बेपर्दा, ये अंजाम बेहयाई का, और नेकियों का सिला नहीं मिलता, नेकियों का सिला नहीं मिलता, ये जमाना नहीं भलाई का, ये जमाना नहीं भलाई का, और आदमी के गुरूर का आलम, आदमी के गुरूर का आलम, अब है दावा उसे खुदाई का, अब है दावा उसे खुदाई का, खुद को कैसे बचा सकोगे तुम, खुद को कैसे बचा सकोगे तुम, दौर है सूद की कमाई का, फल मिलेंगे तुम्हारे कर्मों के, फल मिलेंगे तुम्हारे कर्मों के, बीज बोते हो जो बुराई का, बीज बोते हो जो बुराई का, रास्तों से भटक गए वो खुद, रास्तों से भटक गए वो खुद, शौक था जिनको रहनुमाई का, शौक था जिनको रहनुमाई का। और आखिरी शेर है, काम वो भी मेरे नहीं आए, काम वो भी मेरे नहीं आए, भरते थे दम जो हम नवाई का, भरते थे दम जो हम नवाई का, ऐ सबा अब कोई नहीं अपना, ऐ सबा अब कोई नहीं अपना, वास्ता देना आशनाई का, वास्ता देना आशनाई का, आज भाई नहीं है भाई का, ये जमाना है बेवफाई का। दूसरी गजल भी सुन लीजिए, दूसरी गजल के चंद अशार
3: जी।
2: आईना देगा भी धोखा मुझे मालूम न था, आईना देगा भी धोखा मुझे मालूम न था, उफ बदल देगा चेहरा मुझे मालूम न था, उफ बदल देगा चेहरा मुझे मालूम न था, जहर भी पी लिया सुकरात ने जो हंसते हुए, जहर भी पी लिया सुकरात ने जो हंसते हुए, जहर भी होता है मीठा मुझे मालूम न था, जहर भी होता है मीठा मुझे मालूम न था। और यह शेर शायद आपको पसंद आए, इश्क आसान नहीं गालिब ने कहा था लोगो, इश्क आसान नहीं गालिब ने कहा था लोगो, इश्क है आग का दरिया मुझे मालूम न था, इश्क है आग का दरिया मुझे मालूम न था, दर गुजर करता रहा उसकी जफाओं को मगर, आखिरी शेर है, दर गुजर करता रहा उसकी जफाओं को मगर, वो

0: करेगा मेरा शिकवा मुझे मालूम न था, वो करेगा मेरा शिकवा मुझे मालूम न था। मक्ता है, चल रही शहर में मसमूम हवाएं ए सबा, चल रही शहर में मसमूम हवाएं ए सबा, होगा दुश्वार भी जीना मुझे मालूम न था, होगा दुश्वार भी जीना मुझे मालूम न था, आईना देगा भी धोखा मुझे मालूम न था, उब बदल देगा चेहरा मुझे मालूम न था।
1: शुक्रिया।
2: इश्क आसान नहीं गालिब ने कहा था लोगों, इश्क है आग का दरिया मुझे मालूम न था। तो ये थे जनाब नईम सबा जो अपने अशार पेश कर रहे थे, और अब मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ जनाब अब्दुल गफ्फार साहब, जिन्हें हम अदब की दुनिया में रौनक शहरी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं उनसे कुछ मुरस्सा कलाम।
3: हाजरीन कराम, मदवीन शोरा कराम, मतला हाजिर खिदमत है, मुलाजा फरमाइए। कर के कोशिश माह पारा चुन लिया है,
2: करके कोशिश,
3: करके कोशिश माह पारा चुन लिया है, था किसी को कब गवारा चुन लिया है।
2: था किसी को
3: करके कोशिश माह पारा चुन लिया है, था किसी को कब गवारा चुन लिया है। देखें ये शेर के, कर तसव्वुर तू भी अब तख्लीक रंग के, कर तसव्वुर तू भी अब तख्लीक रंग के, मैंने अपना इस्तारा चुन लिया, मैंने अपना इस्तारा चुन लिया है। ये शेर देखें, ये किस्मते कश्ती में ही सुराख था सो, किस्मते कश्ती में ही सुराख था सो, डर के लहरों से किनारा चुन लिया, डर के लहरों से किनारा चुन लिया है। अब कील कांटे की नहीं परवाह मुझको, कील कांटे की नहीं परवाह मुझको, फिर वही रास्ता दोबारा चुन लिया है। कील कांटे की नहीं परवाह मुझको, फिर वही रास्ता दोबारा
2: चुन लिया
3: है, चुन लिया है। और कब तेरी चश्मे करम मुझ पर नहीं थी, ऊपर वाले की शान में कि कब तेरी चश्मे करम मुझ पर नहीं थी, तेरे होने का सहारा चुन लिया है, तेरे होने का सहारा चुन लिया है। और ठहरे पानी में ये शेर देखे कि ठहरे पानी में मगरमच्छ कम नहीं थे, ठहरे पानी में मगरमच्छ कम नहीं थे, मछलियों ने तेज धारा चुन लिया है, मछलियों ने तेज धारा चुन लिया है। अब दोहे के चंद अशआर में पेश करता हूँ, देख लें मुलाजा फरमाइए। मंजिल आने से पहले, मंजिल आने से पहले,

हुए बहुत है जलील अपने दोनों हाथ में ठोक चुके हैं कील, अरे रौनक ठोक चुके हैं कील। हमसे दोहे कबीर के करने लगे सवाल, हमसे दोहे कबीर के करने लगे सवाल, सिर्फ नहीं।

अगला दोहा देखें कि काजल की बहने लगी मोटी एक लकीर, मुशाहदे कशे दोहा मुलाजा फरमाया कि का

क्या कान में कह कर एक फकीर है रौनक, कह कर एक फकीर। अगला दुआ देखें।

विषकनिया अपनी दे सुगन है रौनक अपनी दे सुगन। ये शेर देखें

0: हाँ खे दुआ मुलाजा फरमा कि मन पर फुंसी को कभी मत ले हल्का यार।
1: मन पर

उस तरफ उजाला हो, तू जिधर जिधर जमके। दूसरा शेर देखें, मैं तो बुझ गया लेकिन मैं

0: के
1: बहुत बहुत बहुत।
0: मैं तो बुझ गया लेकिन अश्क रात भर चमके, उस तरफ उजाला हो तू जिधर जिधर चमके। ये अशार पेश कर रहे थे जनाब अब्दुल गफ्फार यानी रौनक शहरी साहब। और अब मैं दावत सुखन एक बार फिर से देना चाहता हूँ मुश्ताक अहमद खान साहब को।
2: शुक्रिया। मत्ता समाप्त करने का
3: इंसानियत के तौर तरीके नहीं रहे, इंसानियत के तौर तरीके नहीं रहे, इंसानियत के तौर तरीके नहीं रहे, इंसानियत के तौर तरीके नहीं रहे। लोगों में अब खुलूस के जज्बे नहीं रहे, लोगों में अब खुलूस के जज्बे नहीं रहे, लोगों में अब खुलूस।
2: मतलब देखें
3: फुरकत के दिन जो गुजरे हो अच्छे नहीं रहे,
2: क्या
3: फुरकत के दिन जो गुजरे हो अच्छे नहीं रहे, फिर भी मेरी जबान पे शिकवे नहीं रहे, फिर भी मेरी जबान पर शिकवे नहीं रहे, फिर भी मेरी जबान पर।
2: शेर देखे जैनी साहब
1: जी साहब।
3: आबाद गुलशिता ने मोहब्बत वो किस तरह, आबाद गुलशिता ने मोहब्बत वो किस तरह, दुनिया में अब खुलूस के पौधे नहीं रहे, दुनिया में अब खुलूस के पौधे नहीं रहे।
2: ये शेर जो है तो इस पर जो है
3: ये ख्वाहिशों का शहर बसाने की फिक्र में, ख्वाहिशों का शहर बसाने की फिक्र में, इतने बने मकान के रास्ते नहीं रहे, इतने बने मकान के रास्ते नहीं रहे, इतने बने मकान के रास्ते नहीं रहे। और अपना यत्क जो भी थे आयावाल ढह गए, अपना यत्क जो भी थे आयावाल वो ढह गए, मजबूत आज खून के रिश्ते नहीं रहे, मजबूत आज खून के रिश्ते नहीं रहे, मजबूत आज खून के। आज
2: आखिरी शेर है।
3: कच्चे मकान थे तो घरों में भी साथ थे, कच्चे मकान थे तो घरों में भी साथ थे, पुख्ता मका हुए तो घरों दे नहीं रहे, पुख्ता मका हुए तो घरों दे नहीं रहे।
2: और मक्ता समाप्त कर ले।
3: मुश्ताक गैर से कोई उम्मीद क्या करे, मुश्ताक गैर से कोई उम्मीद क्या करे, अपने जो लोग थे वही अपने नहीं रहे, अपने जो लोग थे वही अपने नहीं रहे।
0: एक ख्वाहिशों का शहर बसाने की फिक्र में, इतने बने मकान की रास्ते नहीं रहे।
1: बहुत खूब,
0: बहुत खूब, बहुत अच्छी शायरी की जनाब मुश्ताक अहमद खान ने। एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ जो शोरा इकराम मौजूद थे जनाब अब्दुल गफ्फार और रौनक शहरी, जनाब नईम सबा और जनाब मुश्ताक अहमद खान। तो इसी के साथ आज का स्टूडियो मुशायरा महफिल सुखन अपने इख्तिताम को पहुंचता है।

0: एजाज हुसैन को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
1: सामीन, ये स्टूडियो मुशायरा भी आपने समाप्त किया, इसके जो शामिल होने वाले इसमें शोरा हजरात थे वो डॉक्टर नईम सबा, मुश्ताक अहमद खान और अब्दुल गफ्फार थे, जबकि फ़राइज़ निज़ामत अंजाम दे रहे थे मोहम्मद एजाज हुसैन। आइए इसके बाद हमारी अगली पेशकश मौसीकी, इसके तहत ये गज़ल हम आपकी समातों के हवाले किए दे रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं।

भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में आपने इस गज़ल को अभी समाप्त किया, और अगली गज़ल हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। सामीन, लीजिए आपके समातों के हवाले।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रसपंजरी के अंतर्गत फिल्म संगीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमारे बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इस गाने को हमने लिया फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को अपने धुन से सजाया है प्रीतम ने और आवाजें आतिफ असलम की। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: रेस फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया आतिफ असलम ने, समीर के लिखे इस गीत को अपने धुन से सजाया प्रीतम ने। रसपंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

इस गाने को हमने लिया फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और इरशाद कामिल ने, इसकी धुन बनाई है प्रीतम ने, आवाजें थी आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीपदा की। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर के गाए भजन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

दे प्यार दे फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया अरिजीत सिंह ने। कुणाल वर्मा के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया अमाल मलिक ने।

0: लाल सिंह चड्ढा फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया शिल्पा राव और अरिजीत सिंह ने। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया प्रीतम ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अरिजीत सिंह की आवाज में इस गाने को हमने लिया फिल्म यंगस्तान से। कौसर मुनीर के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया है जीत गांगुली ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं शिवचरण प्रसाद और मंजय प्रसाद कश्यप। पहले सुनिए लोक भजन शिवचरण प्रसाद से।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा

0: बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत कलाकार थे शिवचरण प्रसाद और मंजय प्रसाद कश्यप। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों का सफर, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा।

0: और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गाँव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहे हिंदुस्तान।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

दोस्तों, सुरों के सफर में हम आपके लिए लाते हैं सुरमई संसार के अनमोल हीरों के छुए अनछुए कही अनकही जीवन के सोपानों को। हमारी आज की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे उस कलाकार की जिसने 90 के दशक में अपनी सुरमई आवाज से श्रोताओं के दिल में अलग ही जगह बनाया।

जी हाँ, आज हम बात करेंगे अलका याग्निक की। हिंदी सिनेमा में लगभग 3 दशक तक श्रोताओं के दिलों में राज करने वाली अलका याग्निक रिकॉर्ड 7 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर खिताब जीत चुकी हैं। इन्हें बतौर पार्श्व गायिका 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।

जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संबोधित पत्र इनकी मां को दिया और उनसे मिलने को कहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इस नामचीन जोड़ी ने सबसे पहले अलका की आवाज का परीक्षण किया और कहा जाता है कि उन्होंने अलका याग्निक को दो विकल्प दिए, या तो आप अभी से डबिंग आर्टिस्ट के रूप में कार्य प्रारंभ कर दें या फिर और अभ्यास करके अपनी आवाज में परिपक्वता लाने के बाद गाना प्रारंभ करें। इस प्रकार अलका याग्निक ने दूसरे विकल्प को चुनते हुए संगीत के अपने अभ्यास को अनवरत जारी रखा।

20 मार्च 1966 को नौसेना अधिकारी धर्मेंद्र शंकर एवं शास्त्रीय गायिका शुभा याग्निक के घर कोलकाता में जन्मी अलका ने मात्र 6 वर्ष में ही आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र से अपने गाने का सफर शुरू कर दिया था। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपनी माँ शुभा याग्निक से ही प्राप्त की। गायकी के क्षेत्र में अपनी पुत्री की जिजीविषा को देखते हुए यह परंपरावादी गुजराती परिवार अलका याग्निक को मात्र 10 वर्ष में ही माया नगरी मुंबई में प्रख्यात संगीतकारों से मिलवाने की कोशिश में लग गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक राज कपूर से हुई।

कोलकाता के मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इन्होंने भिन्न भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। गर्मी की छुट्टियों में उनकी माँ उन्हें मुंबई ले जाकर संगीतकारों से मिलने का प्रयास निरंतर करती रहीं। उन दिनों हिंदी चलचित्र जगत में लता जी और आशा ताई की तूती बोलती थी। उन दोनों के सामने गायकी के क्षेत्र में किसी नए कलाकार का उभरना और टिक पाना अत्यंत मुश्किल था। हालांकि अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति जैसे कलाकार भी फिल्मों में गायन कर रहे थे, परंतु फिल्म जगत के ज्यादातर गाने लता और आशा जी से ही गवाए जाते। बड़े बड़े दिग्गज संगीतकार भी कोई नया जोखिम लेना नहीं चाहते थे। संघर्ष के शुरुआती दिनों में अलका याग्निक को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म पायल की झनकार में इस गाने से हिंदी सिने जगत में प्रवेश दिलवाया।

परंतु इस गाने से उन्हें कोई खास प्रसिद्धि नहीं मिली। 1981 में प्रकाश मेहरा की फिल्म लावारिस में कल्याण जी आनंद जी ने अलका याग्निक से वह गाना गवाया जो कि सुपरहिट साबित हुआ और गली गली में अलका याग्निक के नाम को पहचान मिली।

हालांकि फिल्म के नाम में तो वो थीं, परंतु इस गाने से वे श्रोताओं के दिलों में उतनी जगह नहीं बना पाईं। धुन की पक्की और अपने लगन में लगी अलका याग्निक ने 1982 से 88 तक लगभग 350 से भी अधिक गाने गाए, जो हिंदी, गुजराती, मराठी, भोजपुरी इत्यादि भाषा में गाए गए। इसी समय उन्होंने भोजपुरी फिल्म पिया का गांव के लिए यह प्रसिद्ध सोहर गीत गाया, जो आज भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में खूब सुना जाता है।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

इस गाने के लिए पहली बार अलका याग्निक को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ। वर्ष 1989 अलका याग्निक के लिए बेहतरीन साबित हुआ, क्योंकि फिल्म कयामत से कयामत तक के गानों ने उनके लिए एक नया दौर स्थापित किया। साथ में फिल्म त्रिदेव के गाने भी खूब चले।

लता जी और आशा जी के प्रभुत्व को इस प्रकार अलका याग्निक ने तोड़ना प्रारंभ कर दिया और 90 के दशक में तो उन्होंने अपने गानों से फिल्म संसार को पाट कर रख दिया। एक दौर ऐसा भी आया जब वह प्रतिदिन 4 से 5 गानों को रिकॉर्ड करते। यही वह दौर था जब अलका याग्निक ने कुमार सानू और उदित नारायण के साथ गाए युगल गानों से पूरे देश के गांव-गांव एवं शहर-शहर में धूम मचाकर अपनी अमिट छाप छोड़ी।

1991 में आए फिल्म साजन, बंजारन, फूल और कांटे, हम फूल बने अंगारे इत्यादि में अलका जी द्वारा गाए कर्णप्रिय गानों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर झूमने पर मजबूर कर दिया।

सभी तरह के गानों को गाकर अलका याग्निक ने उम्र के हर एक पड़ाव में आने वाले श्रोताओं को अपने गाने की तरफ आकर्षित किया। सन 1992 में जैसे अलका याग्निक के गानों की झड़ी ही लग गई। लगभग सभी हिट फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज को दिया। कई फिल्म तो उनके गाए गानों के कारण संगीतमय हिट होते थे। जिगर, जान तेरे नाम, दिल का क्या कसूर, विश्वात्मा, शोला और सबनम, बोल राधा बोल, जो जीता वही सिकंदर, चमत्कार, खुदा गवाह और दीवाना जैसे फिल्मों के गानों ने हिंदी फिल्म जगत में अलका याग्निक को बतौर गायिका स्थापित कर दिया।

और अब वह किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं थी। फिल्म हम है राही प्यार के इस गाने ने अलका याग्निक को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करवाया।

हालांकि यही वह दौर था जब फिल्म खलनायक में उनके द्वारा गाए गए एक गाने के कारण विवाद भी खड़ा हुआ। कई लोगों ने इस गाने के शब्दों को अश्लील करार दिया, परंतु गायन की अपनी विशिष्ट शैली के कारण इसी गाने ने अलका याग्निक को इला अरुण के साथ पुनः फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। फिल्म आदमी खिलौना है, आंखें, दामिनी, बाजीगर, डर, अनाड़ी, विजयपथ और मोहरा के गानों ने अलका याग्निक को खूब शोहरत दिलवाया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफर। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी

0: संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइन माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कानून की बातें कार्यक्रम में प्रस्तुत है वार्ता, बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। वार्ताकार हैं मधु श्रीवास्तव। आइए आज हम जानते हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितनी जरूरी है हमारे समाज में, हमारे लिए। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है। शिक्षा के द्वारा ही आदमी सबसे बेहतर और सभ्य कहलाता है। पहले हमारे समाज में कुछ उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे, इस कारण हमारे देश का विकास कम था।

जिस देश में हर घर का बच्चा शिक्षित हो तो हमारा समाज और देश काफ़ी विकसित होता है। हमारे यहाँ गांव के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा सके। शिक्षा के अभाव में उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण बहुत होता था। तभी हमारी सरकार ने सभी को बराबर मान सम्मान देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया और कानून बनाकर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा ही हमें अपनी राय बनाने और अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अवसर देती है। शिक्षा ज्ञान और उपलब्धियों के माध्यम से हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, समाज में सभी को समान अवसर प्रदान करती है, चाहे उनकी जाति, वर्ग, लिंग कुछ भी हो। जब समाज शिक्षित होता है तो वह नवाचारों और रचनात्मकता के लिए रास्ता बनाता है। व्यक्ति अपने मतभेदों को दूर करते हैं और रूढ़ियों को तोड़ते हैं, जिससे हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का और संस्कृति का सम्मान करना सीखता है। शिक्षा एक ऐसी शक्तिशाली हथियार है जो समानता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। शिक्षा एक ऐसा अनमोल धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। इसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के लिए अधिनियम 2009 पास होना भारत के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक पल था। यह अधिनियम गर्व के साथ बेहतर बुनियादी शिक्षा पाने के लिए हर बच्चे के अधिकार को सुनिश्चित करने का आधार है। यह अधिनियम अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया और यह शिक्षा के क्षेत्र में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। प्रमुख उद्देश्य है सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना, किसी भी बच्चे से किसी प्रकार के फीस, खर्च या शुल्क ना लिया जाए जिससे वह शिक्षा से वंचित ना हो सके। प्रत्येक बच्चे को उसके निवास स्थान के निकट स्थित सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला दिया जाए। निजी और सहायता प्राप्त विद्यालय में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कक्षा 1 में 25% सीट आरक्षित करना। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देना और विशेष प्रशिक्षण देना। सभी शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित करना। शिक्षक और छात्र अनुपात को संतुलित बनाए रखना। जाति, लिंग, धर्म या किसी भी आधार पर विद्यालय में किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध। यह अधिनियम न केवल शिक्षा तक पहुंच की बात करता है बल्कि गुणवत्ता, समानता और गरिमा की शिक्षा को भी कानूनी रूप से स्थापित करता है। RTE अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषताओं में ही एक है इसकी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा, जिसके अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धारा 3 और 4 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्हें या तो समान विद्यालयों में समावेशी शिक्षा दी जाए या आवश्यकता अनुसार विशेष प्रशिक्षण, ब्रेल, संकेत भाषा, स्पेशल एजुकेटर आदि की व्यवस्था की जाए। भारत में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक समानता और गरिमा का आधार माना गया है। यह केवल बच्चों के उज्जवल भविष्य की कुंजी नहीं बल्कि संविधान की आत्मा का जीवंत रूप भी है। जब वर्ष 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ तो यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि भारत के करोड़ों बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन गया। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग या क्षमता से जुड़ा हो, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि शिक्षा को समावेशी और समान अवसर आधारित

दृष्टिकोण से देखता है, विशेष रूप से CWSN चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स यानी दिव्यांग, बौद्धिक या व्यवहारिक चुनौतियों वाले बच्चों को समान शिक्षा के अधिकार में शामिल कर कानून ने यह सुनिश्चित किया है कि बच्चा उसके भिन्न शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। RTE अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चों को भी समान विद्यालयों में समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाए। इसमें ऐसे शिक्षक होने चाहिए जो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो और विद्यालय में वह आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जिनसे दिव्यांग बच्चे बिना भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सकें। व्हीलचेयर की सुविधा, ब्रेल सामग्री, स्पेशल एजुकेटर, श्रवण यंत्र, ICT टूल्स और सुलभ स्कूल भवन जैसे प्रावधान इस दृष्टि से अनिवार्य हैं। हालांकि यथार्थ यह है कि अभी भी समावेशी शिक्षा का सपना पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया है। देश भर के अनेक विद्यालयों में ना तो विशेष शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता है और ना ही CWSN के अनुकूल आधारभूत ढांचा। मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए यह और भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उनकी आवश्यकताएं केवल शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक भी होती है। इसके अलावा विद्यालय प्रशासन, अभिभावकों और समाज में भी जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी एक बड़ी बाधा है। इन बाधाओं के बावजूद अनेक सकारात्मक उदाहरण भी सामने आए हैं जहां नागरिक समाज, न्यायपालिका और जागरूक शिक्षकों ने मिलकर CWSN बच्चों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। पटना, गया, रांची, पुणे, बेंगलुरु आदि स्थानों पर कुछ विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के मॉडल सफलता से चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता दी है और विशेष रूप से एकीकृत, समावेशी और विविधतापूर्ण शिक्षा प्रणाली की बात की है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि दिव्यांग बच्चे समाज के बराबर के नागरिक हैं और उन्हें शिक्षा का वही अधिकार प्राप्त है जो किसी भी अन्य बच्चे को है। समावेशी शिक्षा न केवल CWSN के लिए फायदेमंद है बल्कि वह पूरे समाज को सहिष्णुता, विविधता और करुणा का पाठ सिखाती है। जब एक कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे साथ पढ़ते हैं तो वे केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि मानवता के मूल्यों को भी आत्मसात करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ना केवल नीति निर्माता बल्कि शिक्षकों, अभिभावकों और पूरे समाज से कि समावेशी शिक्षा को एक संवैधानिक उत्तरदायित्व मानकर लागू करें। RTE एक्ट वास्तव में प्रभावी तभी बनाया जा सकता है जब सभी बच्चों को, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य, सभी को विद्यालय में स्थान, सम्मान और अवसर मिले। बहरहाल किसी भी कानून की सफलता केवल उसकी भाषा या भावना में नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन में निहित होती है। RTE के क्रियान्वयन में अभी भी कई बाधाएं सामने आती हैं, जैसे कि विद्यालयों की आधारभूत संरचना का अभाव, शिक्षकों की भारी कमी, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में गिरावट और बालकों की विद्यालय से ड्रॉप आउट दर। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति और भी जटिल है जहां सामाजिक बाधाएं बच्चों की शिक्षा में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। न्यायपालिका ने समय समय पर इस कानून को सशक्त रूप देने हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि निजी विद्यालयों पर भी यह अधिनियम लागू होता है और वे 25% आरक्षित सीट देने के लिए बाध्य हैं। यह निर्णय शिक्षा को केवल एक सेवा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का औजार मानने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके साथ ही नागरिक समाज, स्वयंसेवी संगठन एवं बाल अधिकार कार्यकर्ताओं की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही है। यह केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज का साझा उत्तरदायित्व है। हम यह नहीं भूल सकते कि कोविड-19

0: महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र को गंभीर झटका लगा। डिजिटल विभाजन ने हजारों बच्चों को पढ़ाई से वंचित कर दिया, विशेषकर वो जो ग्रामीण, गरीब या हाशिए पर रहने वाले समुदाय से थे। यह अनुभव हमें यह सिखाता है, शिक्षा को तकनीकी दृष्टि से भी समावेशी और लचीला बनाना अनिवार्य है। आज जब भारत अमृतकाल में प्रवेश कर गया है, तब यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा को केवल संख्या या दाखिलों की दृष्टि में ना देखा जाए, बल्कि उसकी गुणवत्ता, समावेशिता और अस्थायित्व पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए नीति निर्माताओं, न्यायपालिका, स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और स्वयं बच्चों को मिलकर प्रयास करना होगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार न केवल एक कानून है, बल्कि यह भारत के भविष्य का वह संकल्प है जिसे हमें हर हाल में पूरा करना है। यह सामाजिक क्षमता, आर्थिक सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास का मूल आधार है। जब हम हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करते हैं, तभी हम संविधान के उस सपने को साकार करते हैं। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा स्कूल में हो और शिक्षा केवल शब्दों की नहीं बल्कि प्रत्येक बच्चों के जीवन की वास्तविकता बन जाए। भारतीय संविधान में शिक्षा को प्रारंभ में एक नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन समय के साथ समाज में समानता और सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करने के लिए इसे मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृति दी गई। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 ए से जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार दिया गया। जबकि अनुच्छेद 51 ए यह दायित्व माता पिता और अभिभावकों पर डाला है, वे अपने बच्चे को जरूर शिक्षा दिलाएं। हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि बच्चा स्कूल पहुँचे, बल्कि यह होना चाहिए कि बच्चा स्कूल में कुछ सीख सके, बढ़ सके और सशक्त बन सके, चाहे वह किसी भी शारीरिक या मानसिक स्थिति का हो। यही हर बच्चे के अधिकार का वास्तविक गारंटी है। जब तक हम लोग यह संकल्प नहीं लेंगे कि हमारे घर का बच्चा स्कूल जाए, तब तक यह संभव नहीं है। सबसे पहले हर माता पिता को यह सोचना होगा कि हमारे बच्चे जरूर से जरूर स्कूल जाएं, तभी सरकार ने जो कानून बनाया है वह सही रूप से चरितार्थ होगा। आइए हम संकल्प लें कि हर बच्चे को स्कूल भेजें और एक शिक्षित और सशक्त समाज का निर्माण करे।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
2: कानून की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता।

बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा वार्ताकार थी मधु श्रीवास्तव। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है देशगान।

जान है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भारत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। थीम है सशक्त भारत।
1: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते

0: दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर बहुत स्वागत आपका।
1: धन्यवाद।
0: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
1: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
0: जी।
1: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, अब प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
0: जी।
1: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
0: जी।
1: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेनस्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अ स्पेस इन मेनस्ट्रीम मीडिया चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई में
0: जी।
1: तो हमारे युवा लगभग 30-40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
0: जी,
1: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसे स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
0: जी,
1: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने AI चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइम लाइन। हमारे 95-97% जहाँ पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहाँ हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, AI ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
0: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
1: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है, द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
0: बिल्कुल
1: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया, जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O ब्यूट्रोस ऑक्साइड, लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम-239 इस तरह से,
0: उसकी मात्रा भी सर कम है,
1: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको

0: यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के
1: जी,
0: जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी,
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है, तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दो

0: थोरियम इज फाउंड इन इंडिया और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है. तो उस थोरियम को जब हम ब्याग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233 जो एनरिच नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही फ्यूल ही है. और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे. और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है. तो इस तरह से किया था. और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है. साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए. और किसी ने
1: सर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा. पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था. बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है
1: जी.
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन. वो मोदी जी के कारण संभव हुआ. अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है. बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है. अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं. अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते. तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. तो जैसे हमारा RDI फंड भी है 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं. यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद बड़े हाउसेस तो अलग बात है लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स के उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा. और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा.
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर उसके नेटवर्क को लेकर. कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया. क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था. उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है. वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है. यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे जो अमरीका में 1950 के दशक में यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे. अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में. और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया क्योंकि उसके 4 verticals हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए. और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना. डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण. उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली. यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर लें और हम उससे आगे बढ़ जाएं.
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता. क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई. उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट।

0: बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट, और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रिसाइकलिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा, और उसमें भी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वेन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज हैं उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो Bio-E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटअप, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए।
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: निश्चय, अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट, लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है, हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर, तो ये सारा वॉरफेयर उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल

0: हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले। 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो?
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिट्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे।
1: बिल्कुल सर,
0: यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं। और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, जिस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, एआई कंप्यूटिंग, एआई डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं, जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है। तो समुन्दर से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहाँ 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगा।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज, 12 साल और

0: उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
1: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
0: जी।
1: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर, जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर। तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर, जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयड नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हम 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution, developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
5: Thank you for having me.
4: Ashish, I wanted to begin with your work, which is basically at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquire the transnational muscle?
5: I think we have. As you pointed out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things. As you mentioned, with, say, something like Jan Dhan, what we've done is amazing. Or even if you look at our capital markets, when we changed the architecture to bring in SIP, no other emerging market, you know, has the scale at which. And of course, rolling out our, whether it's roads, rural roads, Saubhagya for electricity, Jal Jeevan. So I think in mission mode, we have achieved a lot with our hard infrastructure. I do think soft infrastructure is more challenging and we need to be more patient. But I believe that there has been a step up with the use of technology, with the use of mission mode, with the focus on KPIs, with

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने आज संयुक्त रूप से गया जिले के खीजरसराय में प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सुमन और श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। 170 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले इस प्रौद्योगिकी केंद्र से प्रतिवर्ष लगभग 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। यह केंद्र सामान्य इंजीनियरिंग, भारी इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल परीक्षण केंद्रों पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में मत्स्य व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़ी दो महत्वाकांक्षी

0: योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पटना के मीठापुर स्थित मत्स्य विकास भवन में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFTV के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यालय से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री आज ही भोजपुर जिले के वाणासुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस पार्क में प्रदेश की नवीनतम मत्स्य पालन तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आज से अभियान बसेरा के दूसरे चरण की शुरुआत की है। 21 जून तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन परिवारों तक वास भूमि का अधिकार पहुंचाना और भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र निर्गत करना है। इसके तहत योग्य श्रेणी के उन वंचित सर्वेक्षित परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिन्हें अभी तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही सरकारी भूमि जैसे गैर मजरुआ, खास और आम भूमि पर बसे पात्र परिवारों की जांच कर उन्हें भी योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी प्रखंडों में 16, 17 और 18 जून को प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, EKYC तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक योजना के लिए अलग काउंटर बनाए जाएंगे तथा संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर शिविर में पहुंचे ताकि योजनाओं का लाभ शीघ्र प्राप्त किया जा सके। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों को आज शपथ दिलाई गई। पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति रंजन कुमार झा, न्यायमूर्ति कुमार मनीष और न्यायमूर्ति राजकुमार ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में, जबकि न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजेश कुमार और आलोक कुमार को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्वी हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लहुरबारी बहुवरा स्थित एक आभूषण दुकान से अपराधियों ने हथियार के बल पर 25 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए। शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक युवक को देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने से एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी और मरकजी वजीर बराए छोटी और वस्त सनत जीतनराम मांझी ने आज मुश्तरका तौर पर गया जिला के खिजर सराय में टेक्नोलॉजी सेंटर का संगे बुनियाद रखा।

0: प्रोग्राम में असेंबली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार, रियासती हुकूमत के वजीर विजय कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सुमन और श्रेयसी सिंह समेत कई मौजूद लोग मौजूद थे। 170 करोड़ रुपए के तखमीना से बनने वाले इस टेक्नोलॉजी सेंटर से सालाना तकरीबन 7,000 नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। ये सेंटर जनरल इंजीनियरिंग, भारी इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल एग्जामिन सेंटर्स पर मरकूज होगा। वज़ीर आला सम्राट चौधरी आज रियासत में माही तजारत को फ़रोग देने से मुंसलिक दो अहम मंसूबों की शुरुआत करेंगे। वज़ीर आला पटना के मीठापुर वाक़े मत्स्य विकास भवन में नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड के रीजनल दफ्तर के इफ्तिताह करेंगे। इस दफ्तर में रियासत माही पैदावार, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के शोबे में रफ्तार मिलेगी। वहीं वज़ीर आला आज ही भोजपुर ज़िला के वानासूर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। इस पार्क में रियासत के जदीद माही परवरी तकनीक की नुमाइश भी की जाएगी। महकमा महसूलात व इस्लाहात एराजी ने आज अभियान बसेरा के दूसरे मरहला की शुरुआत की है। 21 जून तक चलने वाली इस मुहिम का मकसद रियासत के बेज़मीन ख़ानदान तक रिहायशी ज़मीन का हक पहुंचाना और बेज़मीन ख़ानदान को बंदोबस्ती सर्टिफिकेट जारी करना है। इसके तहत अहल ज़ुमरे के उन महरूम सर्वेशुदा ख़ानदानों को बंदोबस्ती सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिन्हें अभी तक ये सर्टिफिकेट हासिल नहीं हुआ है। साथ ही सरकारी ज़मीन जैसे गैर मजरूआ, ख़ास और आम ज़मीन पर बसे अहल ख़ानदान की जाँच करके उन्हें मनसूबा का फ़ायदा यकीनी दिया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से अवामी फलाही मंसूबों का फ़ायदा आखिरी शख्स तक पहुंचाने के मकसद से रियासत के सभी ब्लॉकों में 16, 17 और 18 जून को ब्लॉक सहयोग सह जन कल्याण कैंप का इनाकाद किया जाएगा। कैंप में मरकजी और रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों से मुतालिक दरख्वास्त, रजिस्ट्रेशन, EKYC और फ़ायदा पहुँचाने की सहूलत एक ही मकाम पर दस्तयाब कराई जाएगी। हर मंसूबा के लिए अलग काउंटर बनाए जाएंगे और मुतालिका महकमों के अफसरान और मुलाजमीन मौजूद रहेंगे। मुस्तफीजों से अपील की गई है कि वो आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और दीगर ज़रूरी दस्तावेज साथ लेकर कैंप में पहुँचें ताकि मंसूबों का फ़ायदा फ़ौरन हासिल किया जा सके। पटना हाई कोर्ट के 7 जजों को आज हलफ दिलाया गया। पटना हाई कोर्ट के शताब्दी हॉल में मुनाकिद प्रोग्राम में चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने सभी 9 तकरूर जजों को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। जस्टिस रंजन कुमार झा, जस्टिस कुमार मनीष और जस्टिस राजकुमार ने मुस्तकिल जजों की हैसियत से, जबकि जस्टिस राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजेश कुमार और आलोक कुमार को इजाफी जस्टिस की हैसियत से हलफ दिलाया गया। 7 जजों की तकरूरी के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की तादाद बढ़कर 44 हो गई है। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के शुमाल मशरक, शुमाल वस्त, जनूब मशरक खित्तों में ज़्यादातर मकाम पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा ने कहा है कि रियासत के दीगर हिस्सों में मौसम खुश्क बना रहेगा। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत के साथ शेखपुरा रियासत का गर्म तरीन मकाम रहा। राजधानी पटना का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कैमूर ज़िला के मोहनिया थाना हलका के तहत लहुरबारी बहु आरा वाक़े एक जेवरात की दुकान से जराइम पेशा अफराद ने असलाहा की जद पर 25 लाख रुपए कीमत के जेवरात लूट लिए। शिवहर ज़िला के तरियानी थाना हलका से पुलिस ने एक नौजवान को देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बक्सर ज़िला के राजपुर थाना हलका में गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने से एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। इसके साथ ही इलाके की खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री, डिप्लोमा हो या ओ लेवल, सी सी सी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत

जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड RRB असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वें उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग SSC CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
1: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
3: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे। रहे हैं। रजत का खास पकवान जैसे पोड़ो पीठा, अरीसा पीठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक

0: जापान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैथियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए आशा भोसले को। फिल्म का नाम है समाधि। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

ये सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले रवि को, फिल्म का नाम है धड़कन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

लीजिए सुनिए किशोर कुमार को फिल्म परिचय में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

लिखी सुनी लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत। गीतकार हैं जानिसार अख्तर, संगीतकार जयदेव।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

प्रोग्राम संदेशे आते हैं, जिसमें आप अपनी फरमाइशी गीतों को सुन सकते हैं। 7 बजे सफरनामा और 7:15 पर रोज की तरह मेहमान की बातें। और फिलहाल अभी का जो वक्त है वो है पटना अपडेट्स का। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से रखिए अपने आप को अपडेट और बने रहिए हमारे साथ, यानी कि 101.6 MHz पर, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्वीट सा चैनल है।

0: था सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही
1: बिल्कुल
0: बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए?
1: बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब
0: बस
1: आने वाली है।
0: बस आएगी ना, तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे। और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जब भी हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है। और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है, ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े, है
1: वही तो,
0: ना?
1: बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना।
0: तो वो कौन सी तैयारियां हैं, वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है, वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है, उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है, तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें है मक्खन मलाइयों और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और अब क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये।
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो अब सभी को इंतजार है कथा सुधा का, तो
0: मुझे भी
1: है ना, मुझे भी। तो सुनते हैं आभूषण भाग 3।
0: जी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
4: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का

0: व्यवहार करने लगी तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
0: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, 4 प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन? शीतला की मां कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं? सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है? विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस

0: पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी, मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में। द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं। वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
1: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया,
1: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, आ ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य, शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
2: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही ये सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
3: भैया, क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
0: कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश

0: सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए।
1: कहां से आते हो भैया?
2: गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं?
1: तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे।
2: शीतला बहन, एक बात पूछूं, बताओगी?
1: हाँ।
2: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
1: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या? मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
0: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी, कर्कश स्वर से बोली,
3: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सांप काटे हैं। अरे अपने बनाओ सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी है। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने। हाँ।
1: क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
2: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
1: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
0: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला के मुख कांति मलिन हो गई है, पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
2: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
0: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
4: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
5: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
6: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद
5: आई, और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का।
6: जी,
5: लेकिन बीच में एक गीत सुन लिया जाए
6: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
1: हाँ,
0: है ना?
1: और दुगना होके मिलता है।
0: बिल्कुल दुगना क्या, चौगुना आठ गुना होके मिलता है, क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें।
0: बिल्कुल लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी
0: सहेली।
1: सहेली।
0: और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।
1: बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए।
0: उन्हें वक्त दिया जाए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े, या फिर ना घूमना फिरना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियां या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में 2-4 पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अन

मूल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके

0: समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाए तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं।
0: या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे या फिर क्योंकि क्या होता उन्हें नहीं पता होता, वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं, तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
1: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
0: बिल्कुल सही नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है, तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज की व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहाँ थका हुआ मन सुकून पाता है। उनके मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती, बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथी लिखते हैं, वृद्ध जनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्ध जनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्ध जनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
0: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है, कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती
1: वो
0: है।
1: वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।

0: आते हैं, क्योंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
1: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी नाना नानी है वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
0: जी हाँ, और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज है। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है, जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
1: अब क्या करें,
0: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए, तो एक गाना सुन लेते
1: हैं। गीत

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ।
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी
0: हाँ।
1: गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे।
0: नहीं आ रहे, और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं।
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है,
1: और वो जो खुशबू आती है नहीं,
0: हाँ हाँ हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं।
0: वो तो है। लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: बहुत
0: कई
1: जरूरी
0: सारे
1: है।
0: बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए।

0: चाहिए, इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम, है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो, तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है, तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना है, इससे पानी की बचत तो होती है साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है, तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत दीवारें और खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए, घर की नालियों पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा न हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगता हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: इसलिए फिर वो जो है ना जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह है, और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण पीलिया टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।
0: बिल्कुल, एक साथ ही लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़ सावन भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है, और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे, नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती है।
1: बिल्कुल, करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना सुनना,
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी गर्मी में
1: ना
0: तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की सब्जी हो,
1: अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयो सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है। और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी।
0: और वो ना दोने में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है इस बारे में, पर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाई खा के आएंगे, क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिश या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेडमी पूड़ी मसालेदार आलू की सब्जी।

0: सब्जी बनाई जाती है,
1: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं हाँ। वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेड़ में पूरी होती है ना वो कड़क रहती है,
0: हाँ। है जो खाने में भी मजा आता है।
1: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं, तो योग का अर्थ होता है

0: हमारा जीवन जीने का तरीका, आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं।
1: जी,
0: आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
1: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एक एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। प्रयोग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
1: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है, ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे। हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
0: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है, उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधुबन।

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है, तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं, और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें, और उस समय भी देखिए योग ही आता है।

0: आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से, वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से, शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
1: प्रतिकूल होता है,
0: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
1: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
0: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं, 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
1: फास्टिंग हो गया है,
0: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
1: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
0: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
1: जी जी जी, तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
0: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ,
1: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
0: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं,
0: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना

चाहूंगी। बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था। आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके।

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारे
0: जनरेशन

0: जनरेशन है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
1: अच्छा।
0: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है, तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
1: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
0: दिन में हम खा सकते हैं, क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है, पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप प्लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
1: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए, पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं, और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही ना,
0: पानी की आवश्यकता ही ना हो, इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
1: और कहा भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है। तो उसी प्रेम से आपको

0: खाने को खाना चाहिए, खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए। यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए, पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
0: जी जी।
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने, तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर, और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजीन जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी, जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की
0: जी।
1: विहार मतलब की रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं, या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो बोलते हैं हम तो ने तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। इस स्टूडियो घड़ी में शाम के ठीक 4:29 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांतकालीन सभा। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी पटना के सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना प्रिय युवा कार्यक्रम युवानी और मैं हूं आपका मित्र आशुतोष।
1: और मैं हूं ईशा। हम दोनों आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रस्तुति में, जहां अगले एक घंटे तक हम लेकर आए हैं ज्ञान, जागरूकता, प्रेरणा, तकनीक, खेल और मनोरंजन से भरपूर एक शानदार कार्यक्रम।
0: तो दोस्तों, युवानी केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं की सोच, उनकी रचनात्मकता और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त मंच है। आज के इस एक घंटे के सफर में हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल आशुतोष, आज की हमारी मुख्य चर्चा का विषय है हमारा पर्यावरण, हमारा भविष्य। पर्यावरण केवल हमारे आसपास का प्राकृतिक परिवेशन नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, जीवन शैली और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। स्वच्छ वातावरण, हरित विकास और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है।
0: सही कहा ईसा आपने, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। छोटे छोटे प्रयास जैसे जल संरक्षण, वृक्षारोपण और प्लास्टिक के कम उपयोग से भी हम एक बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: इसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की। यह दिवस हमें अपने बुजुर्गों के सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होने का संदेश देता है। परिवार और समाज में वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: सही कहा ईसा आपने। और दोस्तों, आज ग्लोबल विंड डे के अवसर पर हम जानेंगे पवन ऊर्जा के महत्व के बारे में। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में पवन ऊर्जा एक स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, जो सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: कार्यक्रम में आगे तकनीकी सोमवार के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे एक बेहद प्रासंगिक विषय डिजिटल डिटॉक्स पर। आज के डिजिटल युग में मोबाइल, सोशल मीडिया और स्क्रीन का बढ़ता उपयोग हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में डिजिटल उपकरणों का संतुलित उपयोग कैसे किया जाए, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे।
0: इसके अलावा आपके लिए होगी आज की प्रेरक पंक्ति, खेल जगत की ताजा खबरों से भरपूर स्पोर्ट्स अपडेट और ऐसे कुछ रोचक तथ्य जो आपकी जानकारी में नया आयाम जोड़ देंगे।
1: और हाँ, इन सभी जानकारियों के साथ साथ सुनने को मिलेंगे आपके पसंदीदा

0: द फिल्मी गीत।
1: तो श्रोताओं अगले एक घंटे तक हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए ज्ञान जागरूकता और मनोरंजन के इस विशेष संगम का।
0: और अब समय हो गया आशुतोष आज के कार्यक्रम के पहले मधुर हिंदी फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं आज का पहला गीत फिल्म रमैया वस्तावैया से आतिफ असलम की आवाज में।

0: यह है कि जीवन में बड़े बदलाव अचानक से नहीं होते हैं, बल्कि वे हमारे रोजमर्रा के छोटे-छोटे अच्छे कर्मों से बनते हैं।
1: जब हम ईमानदारी से अपने काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने व्यवहार में विनम्रता रखते हैं, तो यही छोटे कदम हमारे व्यक्तित्व को और मजबूत बनाती है।
0: सही कहा ईसा आपने, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति का छोटा सा प्रयास क्या ही फर्क डाल सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा परिवर्तन किसी एक छोटे प्रयास से ही शुरू होता है।
1: बिल्कुल आशुतोष, और यही नहीं, अगर हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, संसाधनों का सही उपयोग करें और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाएं, तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल ईसा, क्योंकि यह प्रेरक पंक्ति हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव दूसरे से नहीं बल्कि खुद से शुरू होता है।
1: इसलिए हमें हर दिन एक छोटा सा अच्छा कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही आदतें आगे चलकर बड़े परिणाम देती हैं।
0: क्या खूब बात कही है ईसा आपने, और यही संदेश आज के प्रेरक पंक्ति हमें देती है। सकारात्मक सोच और छोटे प्रयासों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: तो चलिए श्रोताओं, अब समय है अगले गाने का। आइए सुनते हैं ये गाना, जो फिल्म जन्नत से है, केके की आवाज में।

0: दोस्तों अब समय है आज की प्रेरक पंक्ति का, जो हमारे श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच से जोड़ती है।
1: श्रोताओं, आज की प्रेरक पंक्ति है, छोटे छोटे अच्छे कार्य ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं।
0: इस पंक्ति का

0: दोस्तों अब समय है हमारे कार्यक्रम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जागरूकता से भरे सेगमेंट का, आज की बात का, जिसमें हम समाज, जीवन और वर्तमान समय से जुड़े गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
1: और आज की बात में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पर्यावरण, हमारा भविष्य। यह केवल एक विषय नहीं बल्कि हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश है।
0: पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, उपजाऊ भूमि, हरियाली और संतुलित जलवायु, ये सभी मिलकर हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। लेकिन यदि इनमें से एक भी संतुलन बिगड़ता है तो उसका प्रभाव पूरे जीवन चक्र पर पड़ता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। आज के समय में पर्यावरण कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। तेजी से बढ़ता वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वनों की अधिक मात्रा में कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं।
0: अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने प्रकृति पर गहरा असर डाला है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या, कारखानों से निकलता धुआं और प्लास्टिक की अनियंत्रित उपयोग इस समस्या को और भी गंभीर बना रहा है।
1: यही नहीं, प्राकृतिक संसाधनों को अधिक मात्रा में दोहन भी एक बड़ी समस्या है। हम पानी, बिजली और ईंधन का जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं वो आने वाले समय में गंभीर संकट पैदा कर सकता है।
0: सही कहा ईसा आपने, लेकिन इसका समाधान हमारे ही हाथों में है। दोस्तों, हमें अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे, जैसे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, वर्षा जल संचयन को अपनाना और ऊर्जा बचत करना।
1: साथ ही हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा और पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं को अपनाना होगा। यह बदलाव भले ही छोटे लगे लेकिन इसका प्रभाव जो है बहुत ही बड़ा और सकारात्मक होता है।
0: सही कहा ऐसा आपने, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी वास्तविक परिवर्तन संभव हो पाएगा।
1: आज की युवा पीढ़ी इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: हमें यह भी समझना होगा दोस्तों कि प्रकृति से हमें जो भी कुछ मिलता है वह सीमित है। अगर हमने अभी सावधानी नहीं बरती तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और पानी जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
1: इसलिए श्रोताओं, जरूरी है कि हम कम उपयोग, अधिक संरक्षण की सोच अपनाएं और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले। यही सतत विकास का आधार भी है।
0: पर्यावरण की रक्षा करना केवल हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की सुरक्षा करना भी है।
1: और जब पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हमारा जीवन, हमारा समाज और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा।
0: बिल्कुल सही कहा ऐसा आपने। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प ले कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और एक स्वच्छ, हरित, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे कदम

0: बढ़ाएंगे।
1: क्योंकि अंत में यही सत्य है, हमारा पर्यावरण ही हमारी भविष्य है।
0: बिल्कुल सही कहा ऐसा आपने। और अब समय है आज के एक कार्यक्रम में अगले हिंदी फिल्मी गीत का। आइए सुनते हैं ये गाना अमिताभ भट्टाचार्य और कविता सेठ की आवाज में, वेक अप सिड फिल्म से।

0: दोस्तों अब समय है युवानी में आज की बात सेगमेंट की अगले कड़ी का, और आज विशेष रूप से हम एक महत्वपूर्ण दिवस को याद कर रहे हैं, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, जो आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है।
1: और ये दिवस हमें ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारे बुजुर्ग केवल परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे अनुभव, संस्कार और परंपराओं की जीवंत धरोहर है।

0: उनका सम्मान और सुरक्षा हमारा नैतिक कर्तव्य है।
1: बिल्कुल ही साहब, बुजुर्ग हमारे जीवन की नींव होते हैं। उन्होंने अपने जीवन भर मेहनत करके परिवार और समाज को आगे बढ़ाया है और अब उनकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है।
0: लेकिन ये चिंता का विषय है कि आज कई जगहों पर बुजुर्गों के साथ उपेक्षा, अकेलापन और कभी कभी दुर्व्यवहार की घटनाएं भी देखने को मिलती है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है।
1: हमें यह भी समझना होगा कि बुजुर्गों की उपेक्षा केवल एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या है। जब हम उन्हें समय, सम्मान और अपनापन नहीं देते तो वे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।
0: इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने घरों में बुजुर्गों के साथ संवाद बनाए रखें, उनसे सलाह लें और उन्हें परिवार के हर निर्णय में शामिल करें। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है।
1: सही कहा ईसा आपने, क्योंकि आज जब यह दिवस मनाया जा रहा है तो यह भी हम सब के लिए एक अवसर है कि हम अपने व्यवहार का आत्म मूल्यांकन करें और यह संकल्प लें कि हम अपने बुजुर्गों को पूरा सम्मान और सुरक्षा देंगे।
0: बिल्कुल आशुतोष, समाज के स्तर पर भी हमें जागरूकता फैलानी होगी ताकि हर बुजुर्ग सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर जीवन जी सके।
1: बिल्कुल सही कहा ईसा आपने, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने घर से ही सम्मान और संवेदनशीलता की शुरुआत करें तो समाज में बड़ा परिवर्तन संभव हो सकता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि एक सभ्य समाज की पहचान इसी से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है।
1: क्या बात कही है ईसा आपने। तो दोस्तों, इस विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर आइए हम सभी यह संकल्प ले कि हम अपने बुजुर्गों को प्रेम, सम्मान और सुरक्षा देंगे।
0: तो आइए श्रोताओं, अब समय है अगले गाने का। सुनते हैं ये गाना जो फिल्म बर्फी से है, निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में।

0: दोस्तों, अब समय है हमारे कार्यक्रम के आज की बात सेगमेंट में अगली कड़ी का। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समय की आवश्यकता से जुड़े विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जी हां, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्लोबल विंड डे, जो आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है।
1: और यह दिन हमें पवन ऊर्जा के महत्व, उसकी उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण में उसकी भूमिका के बारे में जागरूक कराता है। पवन ऊर्जा यानी हवा की गति से बिजली उत्पन्न करना, जो एक स्वच्छ, सुरक्षित और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
0: सही कहा ईसा आपने, क्योंकि आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब यह आवश्यक हो गया है कि हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से कदम बढ़ाएं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। यह न तो जल को प्रदूषित करती है और न ही वायु को, इसलिए इसे पर्यावरण के लिए बेहद सुरक्षित माना जाता है।
0: क्या बात कही है ईसा आपने, और यही कारण है कि आज के देश में पवन ऊर्जा बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। बड़े बड़े विंड फार्म स्थापित किए जा रहे हैं, और हमारे देश में जिस तरीके से पवन ऊर्जा में निवेश हो रहा है, उससे बिजली उत्पादन के नए और अच्छे और स्वच्छ और हरित विकल्प तैयार हो रहे हैं।
1: भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में कई राज्यों में पवन ऊर्जा परियोजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं, जो न केवल ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रही हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही हैं।
0: हमें यह भी समझना होगा दोस्तों कि ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, और अगर हम अभी से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को नहीं अपनाते हैं तो भविष्य में संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय संकट और भी गंभीर हो सकता है।
1: बिल्कुल आशुतोष, पवन ऊर्जा का एक और बड़ा लाभ ये है कि दीर्घकालीन और सतत ऊर्जा समाधान प्रदान करती है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बाद यह वर्षों तक स्वच्छ ऊर्जा देती रहती है।
0: सही कहा ईसा आपने। इसके साथ ही दोस्तों, यह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पर हमारी निर्भरता को कम करती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन भी घटता है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है, और इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है।
1: लेकिन सिर्फ तकनीक अपनाना ही काफी नहीं आशुतोष, हमें समाज में जागरूकता भी फैलानी होगी कि स्वच्छ ऊर्जा अपनाना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: सही कहा ईसा आपने, क्योंकि आज का ग्लोबल विंड डे हमें यह भी संदेश देता है कि अगर हम प्रकृति की शक्तियों का सही उपयोग करें तो हम एक स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य के निर्माण कर सकते हैं।
1: हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है, चाहे वह ऊर्जा की बचत हो, नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन हो या पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना हो।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प ले कि हम स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ कर जाएंगे।
1: क्योंकि हवा की हर लहर में एक हरित, उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाती है।

और अब समय है कार्यक्रम में अगले हिंदी फिल्मी गीत सुनने का। आइए सुनते हैं फिल्म एनिमल से राघव चैतन्य और प्रीतम की आवाज में।

दोस्तों अब समय है युवानी में एक बेहद खास और आज के समय की जरूरत से जुड़े सेगमेंट का। जी हाँ, आज सोमवार है तो आप जानते होंगे कि आज मैं किस टॉपिक का बात कर रहा हूँ।

0: जी हाँ, आज तकनीकी सोमवार, जिसमें हम तकनीक, डिजिटल दुनिया और उससे जुड़ी जीवन शैली पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये टॉपिक आपके जीवन से किस तरीके से जुड़े हुए हैं और आपको यह किस रूप से प्रभावित कर रहा है।
1: तो श्रोताओं, आज तकनीकी सोमवार में हमारा विषय है डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें, यानी लगातार मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और सोशल मीडिया के उपयोग से कुछ समय के लिए दूरी बनाकर अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जाए।
0: जी हाँ दोस्तों, आज के समय में तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई हो या कामकाज, बैंकिंग, मनोरंजन और संवाद, हर क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जब यह उपयोग जरूरत से अधिक हो जाता है, तो यह हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करने लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। आज कई लोग घंटों घंटों मोबाइल स्क्रीन पर समय बिताते हैं, जिससे नींद की कमी, आंखों पर दबाव और तनाव, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं।
0: जी हाँ ईसा, और डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यह भी हम आपको बताएंगे कि कुछ समय के लिए खुद को डिजिटल दुनिया से अलग करना और उस समय को वास्तविक जीवन की गतिविधि में लगाना, यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ आदत है जिसे धीरे धीरे अपनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। इसके लिए हमें अपने दिन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे, जैसे दिन के कुछ घंटे मोबाइल को साइलेंट या दूर रखना, अनावश्यक नोटिफिकेशन को बंद कर देना और सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने की आदत को नियंत्रण करना।
0: साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हर संदेश या हर नोटिफिकेशन तुरंत देखने की जरूरत नहीं होती। अगर हम अपने समय को प्राथमिकता देना सीख लें, तो हम तकनीक पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं।
1: डिजिटल डिटॉक्स का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे हमारा मानसिक तनाव कम होता है और हम अधिक शांत, केंद्रित और उत्पादक महसूस करते हैं।
0: इसके अलावा हम अपने जीवन में कुछ ऑफलाइन गतिविधियां भी शामिल कर सकते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, योगा और ध्यान करना, खेलों में भाग लेना, परिवार के साथ समय बिताना या प्रकृति के बीच कुछ समय गुजारना।
1: यह भी जरूरी है कि हम विशेषकर युवाओं को यह समझाएं कि तकनीक एक साधन है, लक्ष्य नहीं। इसका उपयोग हमें आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि हमें नियंत्रण करने के लिए।
0: सही कहा ऐसा आपने दोस्तों, अगर हम समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स अपनाते हैं, तो केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि हमारी जीवन शैली भी अधिक संतुलित और सकारात्मक बन जाती है।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह बहुत जरूरी है आशुतोष कि हम तकनीक और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन को बरकरार रखें।
0: जी हाँ ऐसा, तो दोस्तों आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम तकनीक का समझदारी से उपयोग करेंगे और अपने जीवन में डिजिटल संतुलन बनाए रखेंगे।
1: क्योंकि असली आजादी तभी है जब हम तकनीक का उपयोग करें लेकिन उस पर निर्भर ना हो जाएं।
0: क्या बात कही है ईसा आपने, तो इसी बात के साथ अब सुनते हैं फिल्म एक था टाइगर से वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाज में यह गाना।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं युवावाणी आकाशवाणी पटना से और अब समय है स्पोर्ट्स अपडेट का। और आज की सबसे बड़ी खबर आई है क्रिकेट के मैदान से, जहां आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया।
1: यह मैच 14 जून को खेला गया था और इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। यह मैच इंग्लैंड के एस्बेस्टन मैदान में खेला गया, जहां दर्शकों को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिला।
0: पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 170 रन बनाए अपने 6 विकेट खोकर। टीम की ओर से स्मृति मंदाना ने बेहतरीन 68 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 36 रनों का अहम योगदान दिया।
1: वहीं अंत में ऋचा घोष ने तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों में 34 रन बनाए, जिससे भारत का स्कोर एक मजबूत स्थिति पर पहुंच गया। पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी में अच्छी कोशिशें देखने को मिली, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव बनाए रखा।
0: लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत तो ठीक रही, लेकिन भारतीय स्पिन आक्रमण के सामने उनकी पारी बिखर सी गई। पाकिस्तान की ओर से मुनीब अली ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिल सका।
1: और फिर मैच की सबसे बड़ी हीरो रही दीप्ति शर्मा, जिन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट मात्र 10 रन देकर झटके। उनकी इस शानदार गेंदबाजी

0: बल्लेबाजी ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी।
1: और इसी कारण पाकिस्तान की पूरी टीम 106 रनों पर सिमट गई और भारत ने यह मुकाबला बड़े अंतर से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपने अभियान की मजबूत शुरुआत की है।
0: यह जीत न केवल स्कोरबोर्ड पर महत्वपूर्ण है बल्कि आत्मविश्वास के लिहाज से भी टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी साबित होगी।
1: तो दोस्तों, यह था आज का स्पोर्ट्स अपडेट, जहां भारत ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से सभी देशवासियों का दिल जीत लिया है।
0: और अब समय है अगले सेगमेंट का, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गाना खान साहब शाश्वत सचदेव की आवाज में फिल्म धुरंधर से।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: दोस्तों, युवानी में अब समय हो गया है रोचक तथ्य का।
4: बिल्कुल आशुतोष, आज के रोचक तथ्यों में हम बात करेंगे प्रकृति, विज्ञान और हमारी दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे मजेदार तथ्य जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
3: जी हाँ दोस्तों, पहला रोचक तथ्य यह है कि क्या आप जानते हैं, केले को वैज्ञानिक रूप से एक बेरी माना जाता है जबकि स्ट्रॉबेरी को बेरी नहीं माना जाता। यह सुनकर थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन वनस्पति विज्ञान के अनुसार यही सच है।
4: वाह, और अब एक ऐसा ऐतिहासिक जानकारी, 1908 में आज के ही दिन कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी। यह भारत के वित्तीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है जिसने संगठित शेयर बाजार की नींव रखी।
3: अब सुनिए दोस्तों एक और रोचक तथ्य, पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे ऐसे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है और इसी के कारण वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन भी बना रहता है।
4: और इसी से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह है कि एक स्वस्थ और परिपक्व पेड़ अपने जीवन काल में पर्यावरण को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाता है। पेड़ न केवल वायु को शुद्ध करते हैं बल्कि तापमान को संतुलित रखने में भी मदद करते हैं।
3: और सुनिए दोस्तों, बांस दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। कुछ प्रकार के बांस एक दिन में लगभग 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं जो कि प्रकृति की एक अद्भुत क्षमता है।
4: और आखिरी रोचक तथ्य ये है कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनि नहीं होती क्योंकि वहाँ हवा ही नहीं होती, इसलिए अंतरिक्ष में होने वाले किसी भी विस्फोट या घटना की आवाज नहीं सुनी जा सकती है।
3: तो दोस्तों ये थे आज के कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्य जो न केवल आपकी जानकारी को बढ़ाते हैं बल्कि आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में भी मदद करते हैं। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों, आज का पूरा कार्यक्रम हमें यही सिखाता है कि ज्ञान, जागरूकता और जिम्मेदारी का संतुलन ही एक बेहतर समाज और बेहतर भविष्य की नींव है।
1: और यह भी कि छोटे छोटे सकारात्मक कदम मिलकर बड़े परिवर्तन का मार्ग बनाते हैं।
0: इसलिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण, अपने समाज और अपने जीवन के प्रति सजग और जिम्मेदार बने।
1: दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: आप हमें ईमेल कर सकते हैं feedbackairpatna@gmail.com पर।
1: तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का, लेकिन यह मुलाकात यहीं समाप्त नहीं होता। हम फिर मिलेंगे नए विषय, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।
0: तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सकारात्मक बने रहिए।
1: आप सभी का धन्यवाद।
0: नमस्कार।

युवाओं का कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

आरती सुने वाला हमार सभन सुनिहार लोगिन के राउर विनिता के प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर उसे आज दिन सोमवार बाप हम राउर ये मन पसंद आरती के लेके आयल बनी। हमेशा नियन आजो हम कुछ नीक नीक जानकारी भरल बात के चर्चा के साथ ही सुनवायम रोवा सभी के एगो वार्ता जिकर विषय हो कि चंपारण के चमकत इतिहास आ भूगोल। वार्ताकार हुई हैं डॉक्टर जगमोहन कुमार जी। आ इहे के साथे राउर मन मनसावन होखत रहो ऐसे हम सुनम आ सुनवाइम हवलदार बलिराम राम जी के आवाज में नीक नीक लोकगीत। तो यह सबके सुने खाती सबसे पहले तो कार्यक्रम के हमने इनके शुरुआत करे पड़ी। आ शुरुआत कर जाइए आज के एकदम नीक बात से बिहार के पर्यटन स्थल पर। देखिये हमने इनके बिहार जोन बनो वो खाली एगो राज्य ना हो बलुक ई इतिहास अध्यात्म अचरज के ऐसन महासागर बा जहाँ हर कंकर में शंकर आ हर माटी में गौरव गाथा लुकाइल बा। आज हमनी के निकल जाए बिहार के शहर पर जहाँ बुद्ध के ज्ञान महावीर के त्याग आ गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद बा। बात अगर करी बोध गया के तो यही वो पवित्र धरती है जहाँ महाबोधि वृक्ष के निचवा भगवान बुद्ध के ज्ञान मिलल रहे। आज ओकर निचवा बैठला पर जन सुकून भेटाला ओकर तुलना नहीं कैल जा सकत। आ एकरे ठीक बगले में बाग गया जी जहाँ देश विदेश से लोग अपन पुरखा लोगिन के आत्मा के शांति खातिर पिंडदान करे आवेले। यहाँ के विष्णुपद मंदिर में साक्षात भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बा। ओहे तरह हमने इनके बिहार में बसल राजगीर 5 गो पहाड़ी से घिरल ही जगह राजा महाराजा लोगिन के राजधानी रहल बा। इहवा के गरम पानी के जो कुंड बा जेकरा के ब्रह्म कुंड कहल जाला ओमे नहैला पर देह के सारा बथा मिट जाला। सीसा के पुल पर चढ़ला पर करेजा मुंह में आ जाला। उहे तरह राजगीर से तनिका आगे रुआ पर हम तरुआ भेटाई नालंदा विश्वविद्यालय के एक खंड है। 5वीं सदी में जब दुनिया पढ़े लिखे के जानतो ना रहे उहे घड़ी यहाँ पर देश दुनिया के लोग पढ़े आवत रह। एकरा के देख के साँचो हर बिहारी के सीना गर्व से चाकर हो जाला। इही के साथे हम रोवा सभन के सासाराम में पानी के बीचो बीच बरल शेर सासुरी के मकबरा के बारे में बतावल चाहम। 8 कोण वाला ई मकबरा अफगान कला के ऐसन बेजोड़ नमूना बा कि एकरा के देखे खातिर दूर दूर से लोग

आवेलन। आ हमार पटना बिहार के राजधानी की अगर बात करें तो सिख लोगिन के दसवां गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी जन्म स्थल उनकर तख्त श्री पटना साहिब नु है। यहाँ के दरबार में माथा टेकला पर रउआ जी सुकून भेटा ये ओकरा के शब्द में कहल नहीं खे जा सकत। आ गोलघर अजायब घर ए सब के तो बाते मत करे। राउ पटने में घूमत घूमत दिन कैसे बीत जाये बुझेबे ना करे। हमने की जो बिहार बा पर्यटन स्थल के मामला में

के काकोलत जलप्रपात चली, जहां के ठंडा पानी में नहा के एकदम तबियत हरियर हो जाई। तब बानू एक से एक जगह बिहार में हमने इनके तो देखी। रउआ सबे भी गर्मी के मौसम के मजा लेवे खाती जाई काकोलत झील आ लिही ओकर आनंद, आ साथे साथे लोक गीत के आनंद भी हम रउआ सबे के दिलवाई। तो चली सुनल जाओ बलिराम हवलदार बलिराम राम जी से ई गीत।

0: सांवर सांवर सुरतिया तोहार दुल्हा, बहुत मन लागल है गीत के सुन के। आगे भी हवलदार बलिराम राम जी से ऐसने नीमन नीमन गीत हम सबन के सुनवावत रह, ताकि राउर मन एह कार्यक्रम के दौरान एकदम हरखित रहो। आ साथ ही देखी अभी अभी हमने इनके बात करत रही जा बिहार के पर्यटन स्थल के। आज हमने इनके बिहार जोन बा वो विकास के रास्ता पर चल चुकल बा। पहले वाला एगो जमाना रहे जब लोग कहत रहन कि बिहार पीछे छूट गई बा, बाकी आजू के बिहार आंखी में आंखी डाल के कहत बा कि अब हमार दौर आ चुकल बा। आज वही बदलत तस्वीर जहां लालटीन के जमाना चल गई, अब एक्सप्रेस वे ड्रोन स्टार्टअप के बयार बह रहा बा, वो बिहार के बात हम रुआ से करब जो उनकी विकास के रास्ता पर एकदम सरपट दौड़त जाता। आवागमन की अगर बात कर जाओ तो बिहार से कोनो कोना से राजधानी पहुंचे में 5 से 6 घंटा से बेसी नहीं खेलागत। अटल पथ, गंगा पथ, जेकरा के लोग पटना के मरीन ड्राइव कहला, आ राज्य के पहला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के देख के खुश हो जाला मन। गंगा नदी पर से एक से बढ़ के एगो मेगा ब्रिज बनता जो उत्तर और दक्षिण बिहार के दूरी के एकदम मिटा देले बा। अब गांव गांव के सड़क पक्की हो गई बा, जेकरा से किसानन के अनाज मंडी तक पहुंचल आसान हो गई बा। अब बात करिए ओह जमाना के जब बत्ती कट जात रहे, चल आवत रहे आ लोग हलकान हो जात रहन, चार चार घंटा बत्ती बुझाई रहत रहे, गर्मी लागत रहे। आज उ दिन बीतल बात हो गई बा। आज बिहार के हर गांव हर कोना में 24 घंटा बिजली मुहैया बा। खाली है ना, बिजली के साथे साथे इंटरनेट के ऐसन जाल बिछल बा कि हमार गांव के लइको लइकी लोग घर बैठे लैपटॉप पर कोडिंग सीख रहल बारे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहल बारे। डिजिटल बिहार के ताकत आजू रसीद काटे से लेके आ जमीन के नापी तक सब काम मोबाइल से फटाफट हो रहल बा। ई हा बदलल बिहार जौन देख के लागता कि हाँ, हमने इनके विकास के रास्ता पर बिहार चल पड़ल बा। अब हमने इनके युवा लोग इनके अगर बात करी तो अब नौकरी मांगे वाला ना नौकरी देवे वाला बन रहल बड़े। पटना से लेके मुजफ्फरपुर तक स्टार्टअप संस्कृति फल फूल रहल बा। बिहान जैसन इनक्यूबेशन सेंटर से नया नया बिजनेस के पंखा मिल रहा बा, नया नया उद्योग चल रहा बा। अब मुजफ्फरपुर के खादी मॉल और लहठी उद्योग अब सीधे विदेश में डंका बजा रहा बा। दवाई पढ़ाई के बात कर जाओ तो आज बिहार में एम्स, आईआईटी, एनआईएफटी आ आईआईएम जैसन देश के सबसे बड़ संस्थान मौजूद बा। हर जिला में मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा बा, ताकि हमने इनके लइकन के पढ़े खातिर बाहर ना जाए के पड़े। गामक उप स्वास्थ्य केंद्रन के अब डिजिटल टेली मेडिसिन से जोर देवल गई बा, जहां बड़ बड़ डॉक्टर घर बैठल मरीज के देख लेता रहे। आ ई विकास तब तक अधूरा रही जब तक हमने इनके माई बहन लोग आगे ना बढ़िए, ता आजू बिहार ओहू में आगे बढ़ चुकल बा। बिहार के जोन जीविका दीदी लोग बारी वो पूरा देश खातिर मिसार बन गई बारी, चाहे वो बैंक दीदी होकर, चाहे खेती बाड़ी संभाले वाली, चाहे अपन छोट उद्योग चलावे वाली। आजू बिहार की महिला शक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होके घर और समाज के बदल रहल बारी। तो ई हमने के नयका बिहार जी अपन पुरान गौरव के समेट ले आधुनिकता के डगर पे मजबूती से डग बढ़ा रहल बा। कमी आजुओ बा, चुनौती आजुओ बा, बाकी हौसला होकर कनहू से कम नहीं खे। सभे से कतही से देखल जाओ तो बेसी दिखाई दे, काहे कि बिहार जोन बा वो रुके के हाल ना जाने। ऐसे ही बदलत बिहार बा आ ई विकास के रास्ता पर चल चुकल बा, एकर विकास के रोकल अब नहीं खे जा सकत। आ अब हम बात करी यही बिहार में चंपारण के चमकत इतिहास और भूगोल के, तो सुनी सभी ई वार्ता। विषय है चंपारण के चमकत इतिहास और भूगोल, और वार्ताकार बारे डॉक्टर जगमोहन कुमार जी, तो सुनी सभी ए वार्ता के।
1: चंपारण के देखी हाल, मन चितलाई सुनी हवाल, सोमेश्वर के ई धरती ह, परम पूज मन भावन, चंपा के जंगल के कारण नाव परल चंपारण। पश्चिम दक्षिण बहे गंडकी, उत्तर में बाटे नेपाल, चंपारण के देखी हाल। पंडित चतुर्भुज मिश्र के लिखल चंपक वन के ई लाइन ह। वर्तमान चंपारण सन 1866 ईस्वी में सारण से अलगे भइल आ स्वतंत्र जिला बनल। हिमालय पर्वत श्रृंखला के

तराई में बसल बिहार के भोजपुरी भाषी इलाका है चंपारण। जल आ जंगल से भरल पुरल चंपारण के नाव चंपा आ अरण्य से मिल के बनल बा, जेकर माने होला चंपा के गाछन से घिरल आ पाटल जंगल। 1972 ईस्वी में चंपारण के भी विभाजन हो गई आ दूगो जिला बनल, 27 प्रखंड वाला पूर्वी चंपारण आ 18 प्रखंड वाला पश्चिम चंपारण। मोतिहारी पूर्वी चंपारण के आ बेतिया पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बन गई। लगभग 9200 वर्ग किलोमीटर में फैलल संयुक्त चंपारण के बात करल जाओ तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोपालगंज सारण जिला आ उत्तर प्रदेश बा, पूर्व में सीतामढ़ी आ शिवहर जिला बा, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश एकर चौहद्दी है। महर्षि वाल्मीकि के तपोभूमि, माता सीता के शरण भूमि, भगवान बुद्ध के यात्रा भूमि आ महात्मा गांधी के कर्म भूमि चंपारण के अपन अलगे ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक आ सांस्कृतिक महत्व बा। वाल्मीकि नगर में भारत नेपाल सीमा पर महर्षि वाल्मीकि के उ आश्रम बा जहाँ देवी सीता आके आश्रय लेली, लव कुश जन्मले आ वाल्मीकि जी रामायण के रचना कैनी। करोड़ों हिंदू लोगन के आस्था के स्थल है ई वाल्मीकि आश्रम। तीन ओरिया से नदी से घिरल, करीब 70 फीट ऊंच टीला पर बनल सोफा शिव मंदिर गौनाहा बहुत प्राचीन बा। एकरा के लोग महाभारत कालीन कहेला, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी लोग 9वीं से 12वीं शताब्दी के बतावेला। बगल में सिद्धपीठ माँ सुभद्रा स्थान भी बा, माँ कालीधाम बेतिया, सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर अरेराज आ बगहा के मदनपुर देवी के प्राचीन मंदिर श्रद्धालु लोगन के आस्था के केंद्र है। मेहसी में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा हलीम शाह के मजार सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक मानल जाला। बेलवतिया पिपरा कोठी में निर्गुण भक्ति के कवि कबीर के नाव से बिहार के एकलौता स्तंभ बा। कहल जाला कि कबीर के बीजक के रचना चंपारण में भइल रहे, तद्वा मठ के महंत रामरूप गोस्वामी के लगे बीजक के पांडुलिपि रहे। स्वर्गीय गोस्वामी जी अपना जीवन काल में एकर प्रकाशित प्रति हमरा के भी सस्नेह देले रहनी। भगवान बुद्ध ए क्षेत्र में अपन उपदेश देले रहनी। इन्हें के याद में सम्राट अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्तूप आ स्तंभ बनवावले। एगो स्तंभ पूर्वी चंपारण के अरेराज लौरिया में बा, जे बिना शीर्ष के खड़ा बा। दू जगह पश्चिम चंपारण में बा, एगो लौरिया में जेकर शीर्ष पर शेर बा। रामपुरवा गौनाहा में दू गो बिना मुड़ी के स्तंभ जमीन पर लेटल बा। लोग कहेला कि लौरिया नंदनगढ़ के टीला वास्तव में एगो विशाल बौद्ध स्तूप है, जे बुद्ध के अस्थि अवशेष पर बनल बा। नंदनगढ़ आ रामपुरवा के वैश्विक मान्यता देवेला ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल कल जा चुकल बा। पूर्वी चंपारण के केसरिया में दुनिया के सबसे लमहर 104 फीट के बौद्ध स्तूप बा। मुगल काल से लेके ब्रिटिश काल तक बेतियाराज के चर्चा रहे। ये भारत के सबसे लमहर जमींदारी में से एगो रहे। कहल जाला कि अंतिम महारानी जानकी कुंवर षड्यंत्र के शिकार भइली। उनकरे राज के लोग अंग्रेजन से मिलके महारानी के मानसिक विक्षिप्त घोषित करवा देलस। नतीजतन अप्रैल 1897 से बेतिया राज कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन चल गए। अब बिहार सरकार वेस्टिंग ऑफ बेतिया राज प्रॉपर्टीज एक्ट आ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियमावली 2026 के तहत बेतिया राज के 24,000 एकड़ से ज्यादा के संपत्ति आधिकारिक रूप से अपना पूरा नियंत्रण में ले लिया ले बिया। एकर संपत्ति बिहार आ अन्य राज्य में भी बा। भारतीय संगीत घराना में बेतिया के ध्रुपद घराना के भी नाव देश विदेश में बा। बेतिया राज द्वारा बनवावल बेतिया के मीना बाजार 325 बरिस पहले के मॉल संस्कृति है। सुनल जाला कि यह बाजार में सुई से लेके जहाज ले कीन बेच होत रहे, मने गरज के सब सामान मिलत रहे। सन 1816 में तत्कालीन नेपाल सरकार आ अंग्रेजन के बीच में ऐतिहासिक सुगौली संधि भइल रहे। आधुनिक इतिहास में चंपारण के नाव सुनहला अक्षर में अंकित बा। तीन कठिया प्रणाली से किसान लोग तबाह रहे। इहे देखेला पंडित राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण आवे के न्योता देहनी। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण रहनी। गांधी जी के लोकप्रियता से घबरा के ओह बेरा के जिला अधिकारी उहां के जिला छोड़े के आदेश देले। देश हित में गांधी जी आदेश के अवहेलना कैनी।
एसडी

0: सुप्रीम कोर्ट में केस चलल, गांधी जी के जीत भइल, चंपारण सत्याग्रह सफल भइल। गांधी जी बढ़हरवा मोतिहारी में पहिलका बुनियादी विद्यालय शुरू कैनी। वृंदावन चनपटिया के बुनियादी विद्यालय आजो चल रहल बा। भितिहरवा गौनाहा में गांधी जी एगो छोट फूस के घर में रुकनी। यहाँ में कस्तूरबा गांधी, अन्य शिक्षक आ स्वयंसेवक आसपास के गांव के लोग के शिक्षा देत रहे, लोग साफ सफाई ला जागरूक करत रहे। लोग बेतिया के हजारीमल धर्मशाला, मोतिहारी के गांधी स्मारक चंद्रहिया, गांधी संग्रहालय, बापूधाम मोतिहारी स्टेशन, सत्याग्रह शताब्दी पार्क, गांधी मैदान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ल जानकारी के आजो बयान कर रहल बा। भारत छोड़ो आंदोलन के बेरा बड़का रामना बेतिया में 24 अगस्त 1942 के एगो लमहर रैली भइल रहे। एमे 8 छात्र युवा लोग शहीद भइल। ई लोग के बलिदान के सम्मान में बेतिया नगर भवन परिसर में शहीद पार्क बनल बा। मोतिहारी में अंग्रेजी साहित्य के विश्वविख्यात उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थली स्मारक बा। अगर भौगोलिक विशेषता के बात कही जाओ तो हिमालय के तलहटी में बसल चंपारण के जलवायु शीतल आ आर्द्र ह। जल जंगल आ पर्वत श्रेणी के चलते एकर भौगोलिक बनावट अलगे बा। इहां थारू उराव जनजाति के लोग भी रहेला। इहां सब मौसम के मजा बा। गंडक सिकरहना आ एकर सहायक नदियन के मैदान में भइला से इहां के माटी बहुत उपजाऊ ही है। दियरा बा खेती किसानी आ घरेलू उद्योग इहां के मुख्य पेशा है। चीनी मिल बा। इहां धान, गेहूं, दलहन, तेलहन, ऊख लगभग सब फसल होला। बासमती चावल, मरचा चिवड़ा, जर्दा आम, शाही लीची, चंपारण मटन वर्ल्ड फेमस बा। यहाँ के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यहाँ बाघ के संगे भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, सुअर, बाइसन, हिरण, सांभर, नीलगाय, लोमड़ी आदि के देखल जा सकेला। जीव जंतुअन के सैकड़न प्रजाति संगे लता, बेल, पेड़ पौधा, वनस्पति, जड़ी बूटी यहाँ मिलेला। जंगल सफारी, बोटिंग सफारी, मॉडर्न सुविधा वाला होटल, गेस्ट हाउस के व्यवस्था बा। यहाँ इको पार्क, इको हट, बम्बू हट, ट्री हट बा, कैंटीन रेस्टोरेंट बा। वीटीआर के अलावा गोवर्धना आ मंगुराहा रेंज में भी पर्यटक लोग के रहे के नीमन व्यवस्था बा। भिखना ठोरी अपन प्राकृतिक सुंदरता ला विश्व विख्यात बा। ठंडी के दिन में यहाँ से हिमालय के हिमाच्छादित धवल चोटी आ अन्नपूर्णा श्रेणी साफ लौकेले। एहिजा के शांत आ मनोहारी परिवेश के मजा इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भी ले चुकल बाड़े। वाल्मीकि नगर में 36 कावड़ा वाला गंडक बराज बा जवन भारत नेपाल के विभाजित करेला। एहिजा बहुउद्देश्य जल शक्ति परियोजना बनल बा। ऐसे निकलल नहर से चंपारण के अलावे यूपी के बढ़हन भू भाग के सिंचाई होला। बैरिया प्रखंड के सरैया मन माने उदयपुर वन्य प्राणी आश्रयनी विदेशी चिड़ियन के आकर्षण के केंद्र ह। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि रामसर साइट में शामिल भइला से उदयपुर झील के वैश्विक पहचान बढ़ल बा। बेतिया मोतिहारी मार्ग पर अमुआ मन में लोग वाटर एडवेंचर के खूब मजा उठावेला। चंपारण बिहार के गौरव ह। एकर इतिहास आ भूगोल खूब चमकता। जन कवि ब्रिज बिहारी प्रसाद चूर जी चंपारण पर लिखले बानी, करिए का कवि लोग बड़ाई, जग चंपारण के गुण गाई, अपन कमाई अपने खाले, केहू सेना मांगे जाले, इहे देखी दुश्मन हहुरेला, चंपारण के लोग हंसेला।
1: बहुत निमन इनकरी वार्ता रहल हा। विषय रहे चंपारण के चमकत इतिहास और भूगोल। आए विषय पे बहुत नीक तरह से जानकारी देले हमने इनके डॉक्टर जगमोहन कुमार जी। सबसे पहले तो इनका तहे दिल से धन्यवाद बा। अब हमने इनके कार्यक्रम के दौरान अपन सभन सुननेहार लोग इनके नीक नीक बात बतावे के कोशिश करेला। तो वही नीक बात में हम रुआ सभन के कहम कि हमने इनके जो पर्यावरण के बात करी, अगर हमने इनके जौन जगह पर रह रहल बानी वह जगह के साफ सफाई या हरियरी के जिम्मेदारी हमने इनके बा। सरकार अपना तरफ से भरपूर प्रयास करत बिया आ अपना तरफ से उनकर पुरजोर पूरा तैयारी बा कि कौना तरह से स्वच्छ राखल जाओ, पर्यावरण के बचावल जाओ। लेकिन फिर भी जब तक हमने व्यक्तिगत तौर पे मिल के आगे ना बढ़म, अपना तरफ से कदम ना बढ़ाएं, तब तक अकेले कुछ नहीं खेब हो सकत। ऐसे रउआ सभन से हमारे दसों नौ जोड़ के इन्हें हो रहा बा कि रउआ सभी भी अपना तरफ

से पूरा प्रयास करी कि कैसे हमने जौन जगह में रह रहल बानी उ जगह बाँच सके, सांस ले सके। हमने साफ सुथरा जगह में रहम तबे न हमनियो के जन सांस बा उ फेफड़ा में निमन जाए, आ ना तो गंदा जगह से गंदा हवा से रुआ कैसन सांस ले हम, सोचे के बात बा। आ हमने इनके भविष्य के भी तो जरूरी बा बचावे के, हमने इनके भविष्य के, हमने इनके बाल बच्चा लोग, हमने इनके भविष्य हवे, हमने इनके लैकन जे आज हमने इनके देख रहल बारे उ काल के का सीखी हैं, तो जरूरी बा कि उनको के सिखावल जाओ पर्यावरण के बचावे खातिर कि हाँ कैसे एकर संरक्षण कर जाओ। सबसे पहले छोट छोट आदत में अगर सुधार हुआ सभे लाइव, जैसे कि हमने इनके घर से बाहर निकली ला तो झोला लेके निकले के चाहे, जौना में साग तरकारी सब्जी कुछ लेवे के मन होके अचके पे मन हो जाला, कहूँ बाहर जाइला टहले कुछ लेवे पर जाला, कुछ दिखाई दे जाला बाजार में आदमी खरीद के ले आवेला, तो हर समय एगो छोटहन झोला कपड़ा के अगर रख लेवल जाओ तो घर से आवे घड़ी घर पे हमने इनके प्लास्टिक के थैली में कोई चीज ना लावे पड़ी। सबसे पहले हमने इनके कोशिश करे परी अपना तरफ से ना कहे के, देवे वाला दुकानदार तो देवे करी, रुआ ना कहे के जरूरत बा। रुआ ना कह के एक बार देखी, जब धीरे धीरे आदत में पड़ जाइनो तो रुआ अपने आप में बड़ा नीमन लागी कि हम कोनो एगो अच्छा काम कर रहल बानी। उहे तरह घर में बिजली बत्ती फालतू जलता ओकरा के बुता दीही, फालतू में अब गर्मी के दिन आइल बा सभे घर में पंखा ना चलता, ओइजा आदमी है नहीं कि आदमी चल देलक। ऐसे कोशिश करी कि जब कमरा से बाहर निकली तब बिजली बत्ती बुझा के बाहर निकली। आपन आपन अब उतना जमीन तो रहल नहीं के कि केहू पेड़ लगाई पौधा लगाई, लेकिन हाँ जितना बा वही में घर के बालकनी बा घर के दुआरी बा ओ जगह पर हल्को हरियरी जरूर राखी। मन देख के हरियरी के हरियर हो जाए, ऐसे जरूरी बा कि जे बुझाए छोटहन छोटहन पौधा जरूर अपन लगाई। आ अगर और गांव में जड़ जमीन बुझाता खलिहा जमीन बुझाता तो लैकन फैकन के शिक्षा दी कि जन्मदिन बा शादी ब्याह बा कोनो तरह के शुभ मुहूर्त बा तो ओह में हमने इनके तरह तरह के पार्टी मनाई ला जा, इतना पैसा खर्चा कर दी ला जा। ओह पैसा खर्चा करे के साथे साथे अगर हमने इनके कोनो एगो पेड़ लगा दही तो पेड़ बड़ होके कतना लोगन के छाया दही। तो देखी हमने इनके पर्यावरण के बचावे खातिर जरूरी बाकी बढ़ चढ़ के आगे आई, आई खाली कहे सुने के बात मत रहो, ये हमने इनके करके दिखाएं, तब जाके हमने इनके आए वाला भविष्य जौन बा वो सुरक्षित रह सकी। जब बात इतना निमन हो रहा बा तो कहे ना हमने एगो और नीक गीत भी रुआ सबन के सुना दही, तो सुनी सभे ए गीत के।

बहुते निक इनकर इहो गीत रहला। आ दोनों गीत खातिर हवलदार बलि राम राम जी के बहुते धन्यवाद बा। अब देखते देखते हमरो जाए के बेरा भ गइल, त ए मंगल कामना के जोड़े के रउआ सबन अपन अपन परिवार में स्वस्थ सानंद रही। हमार मनेरा और विनीता के निहोरा बा कि अब हमरा के जाए देवल जाओ। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से बस थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा आप सुन पाएंगे रात्रि 10 बजे। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रणाम, ये आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रउआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज कहले कि राज्य के सब प्रखंड में मॉडल स्कूल खोलल जाए, जहां लइकन खातिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के व्यवस्था हुई। गया के खिजरसराय में एगो कार्यक्रम में उ कहले सब स्कूल में ऐसन व्यवस्था हुई जेकरा से बिहार के सब कोचिंग संस्थान के बंद होखे के नौबता जाए। श्री चौधरी आगे कहले कि अगला महीना प्रधानमंत्री चाहे केंद्रीय गृह मंत्री के हाथे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के राशि जीविका दीदियन के बीच बांटल जाए। एने गया के संवाददाता बतौले कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी संयुक्त रूप से खिजरसराय में प्रौद्योगिकी केंद्र के आधारशिला रखले। 20 एकड़ में 170 करोड़ के लागत से बने वाला यह केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सीएनजी मशीनिंग जैसन आधुनिक तकनीकी में युवा लोगन के प्रशिक्षित कल जाए। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सुमन और श्रेयसी सिंह समेत कई गो गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में मछली व्यापार के बढ़ावा देवे से जुड़ल दू गो महत्वाकांक्षी योजना के शुरुआत कैले। मुख्यमंत्री पटना के मीठापुर में स्थित मत्स्य विकास भवन में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB के क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ कैले। यह कार्यालय के खुलला से प्रदेश में मछली उत्पादन मार्केटिंग के क्षेत्र में नया रफ्तार मिली। वही जा मुख्यमंत्री आज भोजपुर जिला के बाणासुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क के शिलान्यास कैलन। ए पार्क में प्रदेश के नवीनतम मछली पालन तकनीक के प्रदर्शन कैल जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आज से अभियान बसेरा के तहत दूसरा चरण के शुरुआत कैले बा। 21 जून तक चले वाला यह अभियान के उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन परिवारन तक वास भूमि के अधिकार पहुंचावल और भूमिहीन परिवारन के बंदोबस्ती प्रमाण पत्र जारी कैल बा। राज्य सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजना के लाभ आखिरी आदमी तक पहुंचावे के उद्देश्य से प्रदेश के सब प्रखंडन में 16, 17 और 18 जून के प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण समिति शिविर आयोजित कैल जाए। शिविर में केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग योजना से जुड़ल आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, EKYC और लाभ वितरण के सुविधा एक ही जगह उपलब्ध करावल जाए। पटना उच्च न्यायालय के 7 गो न्यायाधीश लोगन के आज शपथ दिलावल गई। पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय सब नवयुक्त न्यायाधीश लोगन के पद और गोपनीयता के शपथ दिलौली। न्यायमूर्ति रंजन कुमार झा, न्यायमूर्ति कुमार मनीष और न्यायमूर्ति राजकुमार अस्थायी न्यायाधीश के रूप में, जबकि न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजेश कुमार और आलोक कुमार अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ले लें। सुप्रीम कोर्ट पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश के दोबारा नियुक्ति के चुनौती देवे वाला याचिका पर बिहार सरकार दीपक प्रकाश और निर्वाचन आयोग से नोटिस जारी करके जवाब मांगले बा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना के पीठ सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह के याचिका पर सुनवाई करत ए आदेश के देले। याचिका में कहल गईल बा कि दीपक प्रकाश राज्य विधान मंडल के कोनो सदन के सदस्य नहीं खन, एही से उनका मंत्री पद पर बनल रहल संविधान के अनुच्छेद 164 के 4 के प्रावधान के मुताबिक नहीं है। गोपालगंज के एमपी एमएलए अदालत मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ले बा। मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में 2 मई के आयोजित एगो कार्यक्रम से जुड़ल बा। कार्यक्रम के एगो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भइल रहे, जेमे हथियार लहरावे और अश्लील गाना के प्रदर्शन के आरोप

0: लगावल गेल रहे। वीडियो सामने अयला के बाद पुलिस मीरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कैले रहे। मानसून के सक्रियता में पिछला 24 घंटा के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सन में कुछ जगह पर बारिश भइल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक कटिहार के प्राणपुर में सबसे बेसी 84.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कैल गेल बा। मौसम के अनुमान में कहल गेल बा कि बिहान राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सा के छोड़ के बाकी हिस्सन में बारिश के संभावना बा। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिला में कुछ जगहन पर भारी बारिश के चेतावनी जारी कैल गेल बा। एकरे साथे ई आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एही जा समाप्त भइल।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने।

0: अरिजीत सिंह के गाए फिल्म यारियां के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्येन प्रधानमंत्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया संबंधान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तः। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। उक्तं च सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो कारणेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। उत्तरप्रदेशस्य जेवरक्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां सञ्चालनम् अभवत्। अपि च फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडनदेशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडाङ्गणे ट्यूनेशिया देशं 5-1 अंकान्तरालेन पराजयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्रत्येन प्रधानमंत्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया संबंधान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तौ। श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयोः रक्षा सहयोगं परस्पर विश्वासस्य प्रमाणं वर्तते। देशद्वयेन रक्षाक्षेत्रे सहयोगं समेधितुम् अपि सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितम्।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एआई इत्यस्य भविष्यं न केवलं नवोन्मेषे अपितु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
2: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: अत्रावसरे स्लोवाकिया देशस्य प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भारतस्य समेधमानार्थव्यवस्थां प्रौद्योगिकी विकासं च प्रतिपादितवान्। तेन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायी प्रतिनिधित्वम् अपि समर्थितम्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 93वें तमाब्दे स्लोवाकिया देशस्य स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा स्लोवाकिया यात्रा वर्तते। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। एतेन संघर्षेण विश्वे गंभीरः आर्थिकसंकटः जातः, अनेकेषु देशेषु प्राणहानिः च अभवत्।

0: वर्णीयः सञ्चेतना प्रसारिता। अपि च उक्तं यत् दक्षिणपश्चिम प्रावेट प्रभावाय स्थितिः अनुकूला वर्तते। ऐषमः फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडनदेशः अद्य मेक्सिकोदेशस्य मोंटेरे क्रीडाङ्गणे स्वस्य ग्रुप एफ क्रीडायां ट्यूनेशिया देशं पञ्च अंकान्तरालेन पराजयत्। स्वीडनदेशः द्वितीयार्धे प्रबलं प्रदर्शनं कृत्वा विश्वसनीयं विजयं प्राप्नोत्। अनेन विजयेन स्वीडनदेशः स्वस्य विश्वकपस्य अभियानस्य प्रबलम् आरम्भम् अकरोत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: प्रणाम सुमन दीदी।
1: निमिषा बहन, आपको भी नमस्कार।
0: हाँ
1: निमिषा, हम
0: हाँ
1: लोग जब स्कूल में थे, बचपन से ही हम लोग एक कहावत जरूर सुनते
0: हाँ
1: आए
0: हाँ
1: हैं, और आज तक इस कहावत का वही मतलब है और वही महत्व भी है कि जल ही जीवन है।
0: एकदम सही कहा, जल ना है तो कल ना है।
1: हाँ
0: एकदम दीदी सही बात में, अभी जैसे गर्मी बढ़ल है वो में अगर हमने सब पानी अगर के दो बूंद अगर भी अगर ना मिले तो तरस जाए, और जीवन जो है हमने के एकदम तड़पड़ा के आदमी रह जाए।
1: सही बात
0: तो
1: है। गर्मी के समय में
0: हाँ
1: तो पानी पीना भी चाहिए, और अधिक मात्रा में पानी
0: एकदम
1: पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर से इतना पसीना बाहर निकलता है, और अगर शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो हमारे इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा।
0: और दीदी देखा पानी पी के बात कहला, तो पानी अगर हम शुद्ध ना पिए ही मतलब गंदा पानी पिए ही तो पानी तक से प्यास तो बुझ जाए, लेकिन कई तरह की बीमारी हमनी के शरीर में आ जाए।
1: बिल्कुल, कि
0: तो
1: जल तो जीवन है ही है, लेकिन वो जल आपके जीवन के लिए सुरक्षित है जो शुद्ध है।
0: एकदम
1: अगर आप दूषित जल पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो तो प्यास आपको मिटा देगा,
0: एकदम
1: लेकिन उसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो पृथ्वी पर सभी जीव जंतु और मनुष्य अपने जीवन के लिए जल पर निर्भर है निमिषा, और लेकिन जल में जो हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन है, गंदगी
0: हाँ
1: है, जीवाणु है, या फिर कुछ ऐसे विषैले तत्व मिल जाते हैं जो जल को दूषित कर देता है, और वही
0: और
1: दूषित जल कहलाता भी है।
0: एकदम दूषित जल से हमें के कई तरह की जानलेवा बीमारी हो सके है, पेट की समस्या हो सके है, शारीरिक अंग के नुकसान हो सके है। क्या कि दूषित जल सेवन करे से डायरिया, हैजा जगह की कॉलरा भी कहा जाए, टाइफाइड, पेचिस और पीलिया, हेपेटाइटिस ए जैसन की, ये सब जो है जल जनित रोग मानल जाए और एकरा से गंभीर बीमारी कहल जाए एकरा के।
1: सही बात है, लेकिन अब ये जानना जरूरी होता है निमिषा बहन कि किन कारणों से हमारा ये जो जल है दूषित हो रहा है,
0: एकदम
1: और कहीं ना कहीं हम भी इसके
0: हाँ
1: कह सकते हैं कारण है, क्योंकि हमारे द्वारा भी जल कहीं दूषित होता है। तो दूषित जल जो है मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, ये हम सभी जानते हैं। और दूषित जल के जो प्रमुख कारण है उसमें औद्योगिक अपशिष्ट है, हमारे घर का गंदा पानी, कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, या फिर प्लास्टिक
0: एकदम
1: कचरा, और जो हम कचरा है प्लास्टिक है जो नदियों तालाब में हम लोग फेंक देते हैं, या फिर घर का कूड़ा कचरा हम लोग नदी तालाब में फेंकते हैं, तो इन कारणों से जो है हमारा जल स्रोत जो है प्रदूषित हो जाता है, जो उनका उपयोग हम सब के लिए असुरक्षित होता है, बिल्कुल वो सुरक्षित
0: सुरक्षित
1: नहीं
0: ना
1: होता
0: रहे।
1: है।
0: आ देखिए दीदी अगर हमने सब कहा जाए कि जो दूषित जल से प्रतिवर्ष मतलब दुनिया भर के बात कहा जाए तो 14 लाख से ज्यादा लोग के मृत्यु के कारण बन रहे हैं। यहाँ तक कि दूषित पानी से होने वाला 10 से हर साल 5 साल से कम उम्र के 5,000 से लगभग के बच्चों के मौत हो जाए, मतलब कि हर मिनट लगभग एक बच्चा आंकड़े ये दिल के दहला दे है।
1: एकदम
0: और अगर शुद्ध जल हमनी के जैसे कि अगर साफ ना मिल रही है पानी, तो हमनी के कोशिश करे के चाहिए।

0: करके ओकरा के फिर ढक के ओकरा के उपयोग करथिन
1: एकदम। और दूषित जल का जो प्रकोप है वो इतना प्रभावी होता है निमिषा कि अगर दूषित जल के कारण शरीर में कमजोरी हो जाती है, कुपोषण होता है और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो दूषित जल केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि जलीय जीव और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। और जल में रहने वाली जो हमारी मछलियां हैं, फिर अन्य जो जीव जंतु हैं, विषैले पदार्थ के कारण जल में वो मर भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैव विविधता भी प्रभावित होती है तथा हमारा जो प्राकृतिक संतुलन वो भी बिगड़ जाता है।
0: हाँ आज देखा दीदी, हमने सब दूषित जल के बात कर रहे तो आजकल तो आरओ भी है जेकरा में हमने सग रख के पानी का स्वच्छ पानी मिल सके है। और एगो क्लोरीन के गोली भी आवे है जेकरा से अपने रखल जाए तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार एकरा के कुछ देर मिला के पानी में रखती, इसे का होवे कि कीटाणु मर जाए और ये साफ कर दे है। अब पानी के हमेशा ढक के रखे चाहिए और हमेशा कोशिश करे के चाहे कि ओकरा में हैंडल वाला बर्तन से ही पानी के निकाले, हाथ डाल के ना ओकरा में नाखून के गंदगी ना जाए
1: एकदम। और बचपन से भी हम लोग को सिखाया जाता है कि कोई भी खाने पीने की सामान अगर आप छूते हैं उससे पहले आप जरूर अपने हाथों को अच्छी तरह साफ कर ले, धो ले। और दूषित जल की समस्या से बचने के लिए जल स्रोतों को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है कि समय समय पर आप अगर कहीं पर आप पानी रख रहे हैं जमा करके, चाहे वो घड़ा हो, चाहे बड़ा बाल्टी हो, या गांव में आज छोटे छोटे
0: तालाब
1: बनते हैं तो उन सबको समय समय पर आपको सफाई करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि नदियों, तालाबों, झीलों में कचरा बिल्कुल नहीं
0: एकदम दीदी, जैसे कि आजकल प्लास्टिक और पॉलिथीन के इस्तेमाल धरंदे से हो रही है तो धरले से करे की हमनी के कोशिश करे के चाहे की ये पॉलिथीन है, प्लास्टिक है, ओकरा फिर से प्रयोग करे और कोशिश करे की हम थैला लेके जाए कि पॉलिथीन के कचरा चारों ओर है तो हमनी के नदी तालाब में भी कचरा जाए और ओकरा जो है हमनी के पानी में मिल जाए और फिर हमनी के शरीर में ही जाए।
1: सही बात है। और जो उद्योगों से जो अवशिष्ट निकलते हैं तो उन जो भी जल अवशिष्ट के रूप में तो उनका उचित उपचार किया जाना चाहिए। और उससे क्या होगा कि लोगों को भी जागरूक करना होगा कि जल जो है, जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है और स्वच्छता के प्रति जागरूक होना हम सबका परम कर्तव्य है। तो अगर हम लोग एक एक करके खुद से इसकी शुरुआत करेंगे तो हम जो जल है, जो जल ही जीवन है, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है और अगर जल ना हो तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दूषित जल, हमारा जो जल है उसे दूषित होने से हम बचा सकते हैं।
0: और देखिए हमने क्या, अगर जल रहे साफ सुथरा तो हमने की प्यास बुझ रहे और हमने की खाना कुछ भी कोई काम रहे, हमने मन लगा रहे
1: तो मन लगाने के लिए तो जरूरी है कि हम खाना पीना तो खाते ही हैं और स्वस्थ रहने के लिए अधिक से अधिक पानी पीना भी चाहिए और साथ ही साथ मन को स्वस्थ रखने के लिए गीत संगीत भी सुनना चाहिए।
0: तो सुना जाए
1: हम लोग राजीव रंजन सिंह से ये लोक भजन
0: सुना जाए।

हाँ दीदी, देखा कितना निमन ई लोकगीत रहा। तो कहा ना एगो और गीत सुनल जाए, लगले हाथ एकदम। तो सुनल जाए राजीव रंजन सिंह से एगो ई लोक झूमर गीत।

0: यही लोकगीत सुन रहे थे, झूमर गीत, और हम लोगों ने इनसे लोक भजन भी सुना। दोनों गीत के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं, और आगे समय रहेगा तो खेती गृहस्थी में भी इनसे
1: जरूर
0: सुनेंगे
1: सुनेंगे।
0: निमिषा भाई।
1: हाँ,
0: लेकिन अभी समय हो चला है हमारे प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: सुनल जाए।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। एक बार फिर से आप लोगों के अनुरोध पर आपने क्वेरीज की, बहुत ज्यादा जानकारी चाही और कहा कि एक बार फिर से सारी जानकारियां दिलवाई जाए, तो आज फिर से हम एक बार उसी पर चर्चा करेंगे। और वो कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने हाँ बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था। अच्छा लगा, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर, एकदम आपके लिए खोज खोज कर हाँ ऐसे कोर्सेज को हम लाएंगे। और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर। ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया, छोटे छोटे भाई, बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना, तो विशेषज्ञता हासिल होगी, और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार, मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूँ, 1800-121-0051, 1800-121-0051, और एक जो मोबाइल नंबर है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, वो है 9431899002, 9431899002, और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं। किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल, चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है।

0: कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहार।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में ये कोर्स जो है न कोविड था न कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया। आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा आप?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन। उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। इस विषय में क्या, कहां, कैसे हो सकता है कुछ भी बताएंगे। बहरहाल नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें 9431899002, 9431899002, और 1800121051। डॉक्टर नीरज बताइए, हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में।
1: ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है MBBS का। जैसे इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूर दराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और कंसल्ट करके जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
0: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
1: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
0: क्या एलिजिबिलिटी है?
1: इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
0: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
1: नहीं, जो बिल्कुल जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए, जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
0: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद,
1: इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे आप सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और अस्पतालों में इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की, और साथ ही साथ इनकी

0: विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800121051। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
0: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है। इसके अलावा क्लिनिकल पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
1: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो बधाई कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी, या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
0: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं, ब्रिज कोर्स काइंड यू आप कह सकते हैं, कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो डुअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों, और हमारे पास एग्जाम्पल्स है सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जब वो फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तब उनका उनसे आप पूछेंगे, जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग themselves। और इस पे हमारे टीचर, हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है।
1: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1800121051, और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है। तो ढेर सारी संभावनाएं हैं टेक्निकल पढ़ाई में। युवा साथियों, सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, क्या आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
1: हाँ तो दीदी, अभी हमने सब सुन रही हल प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, और ये के संग हमने के चौपाल के समय संपन्न होले, और हमने सब आगू बातचीत करबे खेती गृहस्थी में। लेकिन दीदी, खेती गृहस्थी में बातचीत करे से पहले हमने के अभी के प्रोग्राम में खेती गृहस्थी में अभी सुनल जाए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
4: इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए, उसकी दोस्ती के लिए अपना प्राण दे दे। जैसे तेल और खुशबू से, वैसे ही एक दोस्त के दिल की अच्छी दोस्ती और साथ से दोस्त का मन आनंदित हो जाता है। प्यारे श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम उड़ान में मैं प्रियंका आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारे विषय में प्रोग्राम लेके आए हैं। जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर रिश्ता दोस्ती का, दोस्ती जो जीवन को महका देती है, या यूं कहें कि जीवन को आसान कर देती है। दोस्ती, दोस्ती नाम है शरारत का, मुस्कुराहट का, उम्र भर की चाहत का। दोस्ती एक एहसास है, न भूल सको वो ख्वाब है, कभी यादों में कभी ख्वाबों में, वो हर कहीं मिल जाता है। कोई आए ना आए, दोस्त हर मुसीबत में दौड़ा चला आता है। दोस्ती सुकून है जो हमें हर तकलीफ से निजात दिलाता है। दुख की तपन में दोस्त शीतल बयार बनकर आता है। कभी छेड़छाड़ कभी इकरार, हर दिन की तकरार, मगर दिलों में है प्यार, दोस्ती इसी का नाम है सरकार। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती बहुत ही खास और गहरा रिश्ता है, और हम सबके जीवन में ये रिश्ता होता ही है, या हम सब इस रिश्ते को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच्चे मित्र हीरे की तरह कीमती और दुर्लभ होते हैं, जो आसानी से नहीं मिलते, और अगर मिल जाते हैं तो हमको इसको बहुत संभाल कर सहेज कर रखना चाहिए। हमको इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। कुछ भी हो, हमको बस अपने दोस्त के लिए वफादार रहना चाहिए। कई बार ऐसा वक्त आता है कि हमारी जिंदगी में, हम जिंदगी में उलझ रहे होते हैं और जिंदगी में हार रहे होते हैं, और आसपास कोई ऐसा नहीं दिखता जिसको हम अपने दिल की बात बता सकें। और ऐसे वक्त पर अगर कोई होता है जहां हम सहज महसूस करें, तो वो होता है दोस्त का साथ। और आज ऐसे ही एक प्यार भरे रिश्ते की कहानी लेकर मैं आई हूँ। ऐसी दोस्ती जो अद्भुत थी, जहाँ प्यार, विश्वास सब कुछ था, जहाँ सिर्फ एक दूसरे का होना ही सब कुछ था। जी हाँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा।

बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम सुमा था। काफी बड़ा राज्य था उसका। उसके बड़े बेटे का नाम जीवा था। बहुत सुंदर, योग्य, हर बात में उत्तम था। राजा का बड़ा बेटा था तो आगे चलकर आने वाला राजा उसी को होना था। और उसी राज्य में एक लड़का था जिसका नाम देव था। वह एक चरवाहा था और वीणा बजाता था। एक बार की बात है, इस राज्य में एक दिन संकट आ गया। एक दुश्मन ने इस राज्य में हमला कर दिया और वह दुश्मन इतना खतरनाक था कि कोई भी उससे युद्ध करने को नहीं जा पा रहा था। राजा की हिम्मत भी नहीं थी कि वह उससे युद्ध करे और ना ही प्रजा के किसी इंसान में हिम्मत थी कि कोई

जाकर उससे युद्ध करे। सब डरे हुए थे। तब देव को पता चला वो चरवाहा था और अपने घर में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई भी राजा की सेना में ही थे, पर पूरे राज्य में किसी के अंदर युद्ध करने का साहस नहीं था। तब ये बात देव तक पहुंची और देव ने राजा से कहा कि वह युद्ध करने को जाएगा। राजा ने और सब ने उसको बहुत मना किया और कहा कि वह अभी छोटा है और ना ही उसे युद्ध की समझ है, और जिसे युद्ध करना है वो तो बहुत बड़ा योद्धा है। तब देव ने कहा कि वह रोज जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता है और वहां पर कई बार वो जंगली जानवरों से अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता है। तब समय आया कि राजा ने देव की बात मान ली और देव ने उस दुश्मन को मार गिराया, और हुआ यूं कि वह देव देखते देखते सबका चहेता हो गया और राजा का बड़ा बेटा जीवा देव को अच्छा मानने लगा और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और जीवा देव को बेहद प्यार करने लगा। वो राजा का बेटा था और देव चरवाहा था, पर दोनों के बीच बेहद प्यार था। तब ऐसा हुआ कि प्रजा के बीच देव काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था और यह देखकर राजा को अच्छा नहीं लगा और राजा को देव से जलन होने लगी। दूसरी तरफ जीवा और देव की दोस्ती बहुत ही गहरी होती जा रही थी। कुछ समय बीतता गया और राजा के अंदर की जलन बढ़ती गई, क्योंकि राज्य के लोगों के लिए देव एक नायक के समान हो गया था। तो राजा की ईर्ष्या और क्रोध देव के लिए इतना ज्यादा हो गया कि राजा ने देव को मार डालने का निश्चय किया और राजा देव को मारने का बार बार प्रयत्न करने लगा और हर बार देव बच जाता था। राजा का बेटा जीवा देव को सब कुछ बता देता था। जो भी उसका पिता योजनाएं बनाता था देव को मारने के लिए, जीवा सब कुछ देव को बता देता था। जीवा ने अपनी तलवार, अपने राजकीय वस्त्र, अपना धनुष, सब कुछ देव को दे दिया और दोनों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी क्यों ना हो, उनकी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। एक दिन राजा ने अपने बेटे जीवा को बुलाकर कहा कि वे देव को मार डाले, पर जीवा ने ऐसा नहीं किया और उल्टा राजा से वचन ले लिया कि वह देव को कुछ नहीं करेंगे। पर एक दिन राजा ने सेना भेज दी देव को मारने के लिए और देव वहां से भाग गया। तब देव ने और जीवा ने गुप्त में एक बैठक की और उस गुप्त बैठक में दोनों ने मिलकर एक दूसरे से वादा किया कि कुछ भी हो पर वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा वफादार रहेंगे, एक दूसरे के परिवार पर दया करेंगे और एक दूसरे के परिवार की हिफाजत करेंगे। तब देव के पास राजा के घर से दावत का निमंत्रण आया, क्योंकि देव राजा के सेना में था। देव को राजा के उस भोज में शामिल होना था। तब देव ने और जीवा ने तय किया कि जीवा अपने घर जाकर पता लगाएगा कि कहीं भोज में देव की जान को खतरा तो नहीं है, और अगर हुआ तो देव को जीवा सब कुछ बता देगा। तब भोज का समय निकट आया और देव भोज में नहीं गया। तब राजा ने पूछा कि देव क्यों नहीं आया। तब जीवा ने राजा को कुछ बहाना बता दिया। तभी राजा क्रोधित हुआ और राजा का सारा क्रोध जीवा पर निकला। राजा ने अपने बेटे से कहा कि तुम क्यों नहीं समझते हो कि जब तक देव जिंदा है तुम राजा नहीं बन सकते। प्रजा के अंदर देव के लिए प्यार है और देव के होते हुए तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, इसलिए जाओ और देव को लेकर आओ ताकि मैं उसको मार दूं। तब जीवा ने कहा, आप क्यों देव को मारना चाहते हैं? तब क्रोध में राजा ने अपने बेटे के ऊपर ही भाला फेंक दिया, पर जीवा बच गया। तब जीवा को समझ आ गया कि देव की जान को खतरा है और जीवा वहां से चला गया और उसने जाकर देव को सब कुछ बता दिया और देव से कहा कि उसकी जान को खतरा है और वो वहां से भाग जाए। दोस्तों, तब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वे बहुत रोए। तब जीवा ने देव से कहा कि तुम यहां से भाग जाओ,
पर हमारी

दोस्ती ऐसी ही रहेगी। ईश्वर तुम्हारे और मेरे वंश के बीच में हमेशा रहेगा। तब दोनों ने एक बार और एक दूसरे को गले लगाया और वो दोनों लिपट लिपट कर रोने लगे। और फिर देव वहां से दूर सुरक्षित जगह पर चला गया और जीवा अपने घर वापस आ गया। तब कुछ वक्त के बाद अचानक फिर उस राज्य पर आक्रमण हुआ और युद्ध होने लगा। देव वहां नहीं था। तब उस युद्ध में राजा और उसके पुत्र मारे गए और जीवा भी उस युद्ध में मारा गया। तब देव तक ये समाचार गया। देव टूट गया। उसने अपने एक अच्छे सच्चे भाई जैसे दोस्त को खो दिया। तब देव ने उस इंसान को मार डाला जिसने राजा और उसके पुत्रों को मारा था।

तब उस देश का नया राजा देव को बनाया गया। और फिर देव ने सबसे पहले जीवा के परिवार से उसके बेटे को बुलाया और जितना कुछ राजा का था और जीवा का था सब कुछ उसको लौटा दिया और उसको अपने साथ अपने महल में रखा। और इस तरीके से देव ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, एक अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जी हाँ, एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। देखा दोस्तों, सिर्फ दोस्त कह देने से दोस्ती नहीं हो जाती। दोस्ती निभाने के लिए सच्चाई, वफादारी और अटूट प्यार का होना बहुत जरूरी है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है, जैसा देव और जीवा के बीच में था। जीवा दोस्ती के कारण अपने पिता के खिलाफ चला गया क्योंकि उसको पता था कि देव सही है। जीवा को भी पता था कि देव के होते हुए जीवा कभी राजा नहीं बन सकता, पर फिर भी उसके लिए राजगद्दी जरूरी नहीं थी, अपना दोस्त जरूरी था। और बदले में देव ने अपना वचन पूरा किया और जीवा के परिवार की देखभाल की।

हाँ दोस्तों, आज हमको भी जरूरत है कि अगर हम दोस्ती करते हैं तो ऐसी पवित्रता होनी चाहिए हमारी दोस्ती में, विश्वास होना चाहिए हमारी दोस्ती में। किसी ने इस प्रकार कहा है कि दोस्ती करो तो ऐसी करो कि भगवान भी आपको दोस्त बनाना चाहे। दोस्तों, ऐसे ही हमारे कुछ दोस्त हैं आज जिनका नाम हम हमारे प्रोग्राम में साझा करना चाहते हैं। जी हाँ, हमारी दोस्त हैं ज्योति शर्मा जी हरदोई यूपी से, नीलिमा द्विवेदी जी बाराबंकी यूपी से, हमारे दोस्त रोशन सिद्दीकी नवादा बिहार से, और हमारे दोस्त कामेश्वर सिंह समस्तीपुर बिहार, अरुण कुमार उन्नाव यूपी से, और राम प्रहलाद सुपौल बिहार से। हम आप सबका हमारे प्रोग्राम को सुनने और प्रशंसा करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है 8826224477।

जी हाँ, 8826224477। तो दोस्तों, ऐसे ही दोस्ती निभाते रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: हाँ तो निमिषा बहन,
1: हाँ
0: हम सभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, और अब समय है खेती संबंधी कुछ बातचीत।
1: हाँ
0: वैसे निमिषा बहन, हमारे खेती गृहस्थी कार्यक्रम में हमारे कृषि वैज्ञानिक गण, कृषि विशेषज्ञ गण समय समय पर हमें वार्ता या कविता लिखकर भेजते हैं, ताकि उन वार्ता और कविताओं के जरिए हम किसानों तक कुछ अच्छी बातें, कुछ जानकारीपूर्ण बातें पहुंचा
1: पहुंचा
0: सके।
1: सके।
0: इसी कड़ी में आज एक कविता पाठ हम लोग करेंगे, और ये जो है डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई है यह कविता, और इसका शीर्षक है स्वस्थ मिट्टी के लिए तकनीकी समाधान। तो हम लोग इसका पाठ करते हैं, ताकि हमारे जो किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उससे कुछ इन्हें लाभ भी मिले और इन्हें उनका
1: जानकारी
0: हाँ
1: मिले।
0: जानकारी भी मिले। अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग मिट्टी को बनाता लाचार, इससे बिगड़ता स्वस्थ धरा का आओ करें हम गहन विचार। जितनी लगी हो पौधों की भूख, हम उतना ही दे उनको आहार। सही मात्रा में उर्वरकों का उपयोग है वैज्ञानिक खेती का आधार। मृदा परीक्षण करवाना है जरूरी, जानने को मृदा में मौजूदा तत्व, तो सब बनवा लो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये है हम सबका दायित्व। किस तत्व की है कितनी कमी और कितने देने होंगे पोषक तत्व, सही आकलन व सक्षम प्रयोग देगा स्वस्थ मिट्टी को स्थायित्व।
1: सही स्रोत सही मात्रा की सबकी रखनी होगी। जानकारी सही समय पर सही विधि अपनाने का हर कोई है अधिकारी। वैज्ञानिक विधि अपनाने से मिटेगी बेबस किसानों की लाचारी। मृदा में पोषक तत्वों का अनुप्रयोग है मृदा के लिए लाभकारी। उचित समय पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का अनुप्रयोग करो। लीफ कलर चार्ट अपनाकर आवश्यक नत्रजन का व्यवहार करो। राइजोबियम एवं एजिटोवेक्टर से नतजन मिट्टी में स्थिर करो। यूरिया का प्रयोग घटाओ। ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करो।
0: नील हरित शैवाल के द्वारा धान फसल में नत्रजन की आपूर्ति करो। फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया से फास्फोरस मिट्टी में उपलब्ध करो। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग घटाओ और मृदा प्रदूषण को कम करो। प्राकृतिक व जैविक खेती अपनाओ, उत्पादन पौष्टिकता से भरपूर करो। हो मिट्टी में ज्यादा क्षारीयता तो जिप्सम का करना अनुप्रयोग, और यदि अम्लीय हो मिट्टी तो चूने को मिलाना है सही प्रयोग। सूक्ष्म सिंचाई से घटती लवणता, पोषक तत्वों का पौधे करते भोग, रहे माटी स्वस्थ मिले ज्यादा उपज, हमें लेना होगा सबका सहयोग।
1: गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट से मिट्टी में पोषक तत्व भरो। ढैचा के प्रयोग से मिट्टी की जल धारण की क्षमता में सुधार करो। फसल चक्र को अपनाकर के फसलों में दलहन को शामिल करो। फसल अवशेषों व सूखे पत्तों से ढक मिट्टी में नमी बरकरार रखो। बार बार गहरी जुताई करने से सूक्ष्म जीवों की को पहुंचता नुकसान, न्यूनतम जुताई में घटती लागत व कारण कार्बन संरक्षण होता आसान। फसलों के साथ मेरों पर पेड़ मिट्टी को करते पोषक तत्व प्रदान। होता ज्यादा लाभ, रुकता मृदा क्षरण, मिलता एक अस्थाई अस्थाई समाधान।
0: तो आओ हम सब करें प्रतिज्ञा, इस माटी को हरदम स्वस्थ रखेंगे और आवश्यकता अनुसार उर्वरकों का हम सक्षमता से व्यवहार करेंगे। फसल अवशेष को मिट्टी में ही सड़ाएंगे और पराली नहीं जलाएंगे। इस तरह दीर्घ काल तक हम अपनी माटी को उपजाऊ बनाए रखेंगे।
1: वाह, कितना निमन कविता रहल दीदी, और कितना जानकारी एकरा से भेजल।
0: हाँ, इस कविता के माध्यम से हर एक चीज को बड़े ही

0: खेती संबंधी बहुत ही बढ़िया ढंग से जानकारी दी डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी ने, इस कविता को इन्होंने लिखा, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग थोड़ा सा सब्जियों में जो फसल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है उस पर थोड़ी बातचीत कर ले।
1: एकदम अदी, देखिए सब्जी में फसल में सही समय पर अगर सही से हार्मोन का प्रयोग कर जाए तो बहुत ही फायदेमंद होवे है। और सब्जी के फसल में कई तरह का प्रमुख हार्मोन है जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, तो ये सब के प्रयोग कैसे कर जाए, कैसे और कितना मात्रा में कर, ये जानने के बहुत जरूरी है। जैसे ना ऑक्सिन, एकर कार्य होवे कि कोशिका विभाजन, जड़ों के विकास और फूलों के झड़े के रोके में मदद करे है। एकर उपयोग टमाटर, मिर्च, बैगन के फसल में फूल आवे घड़ी एकर छिड़काव कर जाए, जगह से एकरा झड़े फूल झड़े कम है और फल अधिक संख्या में लगे है।
0: और समय से पहले उत्पादन कुछ हार्मोन फसल को जल्दी तैयार करने में मदद करते हैं, जिससे किसानों को बेहतर बाजार मूल्य भी मिलता है और फूल और फल झड़ने की जो समस्या है वो भी कम होती है। हार्मोन के प्रयोग से अधिक फूल जो है फल में परिवर्तित भी होते हैं, तो इससे गुणवत्ता में सुधार होता है, सब्जियों का रंग, आकार और आकर्षण भी बढ़ जाता है, जिससे उनकी बाजार में बहुत मांग होती है। तो अब इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद चलिए हम अपने श्रोताओं को क्यों ना एक कृषि गीत सुनवा दें राजीव रंजन सिंह से।

0: वाह सही में दीदी, हमने के बापू जी रहे, हमने के तो हमने के पूर्वज लोग खेती बाड़ी करते रहती, हमने के कोई बापू जी रहे या दादा रहे या नाना रहे, कोई ना कोई किसान तो जरूर रहतीन
1: एकदम। तो इस गीत के माध्यम से किसान के भावना को बहुत ही बढ़िया ढंग से राजीव रंजन सिंह ने व्यक्त किया, इनको इस गीत के लिए धन्यवाद। और अब चलने का समय हो चला है, तो निमिषा बहन हम लोग चले।
0: हाँ, तो प्रणाम सुमा दीदी।
1: नमस्कार निमिषा बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल के तहत खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
3: कहाँ?
5: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
8: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रखंड स्तर पर खुलने वाले मॉडल स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की होगी व्यवस्था, छात्रों को कोचिंग की नहीं होगी जरूरत। दीपक प्रकाश की मंत्री के रूप में पुनर्नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, बिहार सरकार दीपक प्रकाश और निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। राज्य के सभी प्रखंडों में कल से 18 जून तक लगेगा प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर, एक ही स्थान पर मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। और मौसम विभाग ने कल भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, जहां बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होगी। गया के खीजरसराय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था होगी जिससे छात्रों को कोचिंग संस्थानों की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
1: हमने कहा है स्कूल को अच्छा करना है। जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, वैसे 211 जगह पर डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। सभी प्रखंडों में हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं, सरस्वती विद्या निकेतन बना रहे हैं। वहाँ हमारे बच्चे कैसे नीट की परीक्षा का तैयारी कर सके, वहाँ पूरी तरह पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम पूर्ण रूप से आगे के दिनों में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाए और सिर्फ बिहार सरकार का ही स्कूल चलता रहे, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है।
0: श्री चौधरी ने कहा कि अगले महीने प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि जीविका दीदियों के बीच वितरित की जाएगी।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी या आदरणीय गृह मंत्री जी अगले महीने आएंगे और हम लोगों ने तय किया कि जिस दिन वो आएंगे उसी दिन बिहार की जितनी बची हुई बहनें हैं सबके खाते में उनको 10,000 रुपया और जिसने उससे अधिक काम कर लिया उसको 20,000 रुपया देने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है। साथ
0: इधर हमारे गया संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संयुक्त रूप से खीजरसराय में प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी।
2: 20 एकड़ में 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और CNC मशीनिंग जैसी आधुनिक तकनीकों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस केंद्र से प्रति वर्ष लगभग 7,000 युवाओं को कौशल विकास से जुड़ने तथा 1,000 से अधिक MSME को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यह पहला स्थानीय विनिर्माण का सशक्त बनाते हुए बिहार को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर और अधिक गति प्रदान करेगी। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सुमन और श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार के लिए खिजरसराय से धर्मवीर भारती।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मत्स्य व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़ी दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पटना के मीठापुर स्थित मत्स्य विकास भवन में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFTP के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया। इस कार्यालय के खुलने से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने आज ही भोजपुर जिले के वाणासुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास किया। इस पार्क में राज्य की नवीनतम मत्स्य पालन तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आज से अभियान बसेरा के दूसरे चरण की शुरुआत की है। 21 जून तक चलने

0: वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन परिवारों तक वास भूमि का अधिकार पहुंचाना और भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र निर्गत करना है। इसके तहत योग्य श्रेणी के उन वंचित सर्वेक्षित परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिन्हें अभी तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। 18 जून तक चलने वाले इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, EKYC तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट।
1: शिविर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,

0: तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट।
1: शिविर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, लखपति दीदी, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान एवं छात्रवृत्ति योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक योजना के लिए अलग काउंटर बनाए जाएंगे तथा संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। शिविरों में हेल्प डेस्क, प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता और स्वास्थ्य जांच शिविर की भी व्यवस्था रहेगी, जिससे लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन और सेवाएं आसानी से मिल सके। लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर शिविर में पहुंचे, ताकि योजनाओं का लाभ शीघ्र प्राप्त किया जा सके। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बी मोहना की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनका मंत्री पद पर बने रहना संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि गैर सदस्य व्यक्ति को मंत्री बनाए जाने की 6 माह की संवैधानिक छूट का लाभ दोबारा नहीं दिया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों को आज शपथ दिलाई गई। पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति रंजन कुमार झा, न्यायमूर्ति कुमार मनीष और न्यायमूर्ति राजकुमार को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में, जबकि न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजेश कुमार और आलोक कुमार को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटिहार के प्राणपुर में सबसे अधिक 84.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों में बारिश की संभावना है। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी अपनी जारी की गई है।
1: दिनांक 16 जून राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना और रोहतास जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 5 तक की कक्षाओं को 20 जून तक बंद कर दिया है। वहीं 6 से 8 तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 10:30 तक ही होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
1: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव यादव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने प्रदेश के विभिन्न प्रखंडों में नवसृजित 211 सरकारी डिग्री महाविद्यालयों में उर्दू और मैथिली की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 1 जुलाई से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होगा। गोपालगंज की एमपी एमएलए अदालत ने मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक कुंजन सिंह की को अग्रिम जमानत दे दी है। मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव में 2 मई को आयोजित कार्यक्रम से जुड़े मामले में यह जमानत मिली है। नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 व्यक्तियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार छुनकिया बाबा के पास स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ लिया था और बेरहमी से पिटाई कर दी थी। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना की जांच के लिए एसडीपीओ राजगीर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। मुंगेर जिले के गंगटा मोड़ चौक के पास ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर में 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लहुरबारी बहुवरा स्थित एक आभूषण दुकान से अपराधियों ने हथियार के बल पर 25 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए। शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक युवक को देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने से 1 बच्चे की डूबकर मौत हो गई। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बटिया चौक के पास से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 346 लीटर शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए आवश्यक जीवन प्रमाणीकरण करवाने के लिए आज समाहरणालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रखंड स्तर पर खुलने वाले मॉडल स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की होगी व्यवस्था, छात्रों को कोचिंग की नहीं होगी जरूरत। दीपक प्रकाश की मंत्री के रूप में पुनर्नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, बिहार सरकार दीपक प्रकाश और निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। राज्य के सभी प्रखंडों में कल से 18 जून तक लगेगा प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर, एक ही स्थान पर मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। और मौसम विभाग ने कल भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ?
3: नया किड़

0: बैग चाहिए
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार।
1: भागलपुर जिले के विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज पर बीते 7 जून से आवागमन शुरू हो गया। राज्य के पथ निर्माण मंत्री सह बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके साथ ही निर्धारित नियमों के आधार पर बेली ब्रिज पर परिचालन शुरू किया गया। गौरतलब है कि विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद आवागमन बाधित हो गया था। घटना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वेक्षण के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान श्री चौधरी ने लोगों को आश्वासन दिया था कि विक्रमशिला सेतु पर 7 जून तक आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत कर लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक सहयोग मांगा था। इसके बाद बीआरओ की टीम भागलपुर पहुंची और पथ निर्माण विभाग तथा स्थानीय जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। बेली ब्रिज के शुरू होने से लाखों लोगों को सुविधा मिली है और लोगों में खुशी देखी जा रही है। बेली ब्रिज उद्घाटन के अवसर पर पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज पाल, भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, बीआरओ के अधिकारी विपिन कुमार चंद, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी सुरेंद्र सिंह सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, भाजपा और जदयू के कई नेता तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
2: एक मैं अनुरोध जरूर करूंगा, आप घंटों ट्रेवल करते हैं, पुल पे जो क्यू सिस्टम है, जो लाइन सिस्टम है, उसको कृपया फॉलो करें, क्योंकि वो लाइन सिस्टम है जो पहले आए हैं उनको हम पार कराएंगे और जो हमारा ब्रिज बिल्कुल दुरुस्त होकर के चलेगा, तो वहाँ अफरा तफरी नहीं करें और जो व्यवस्था है वहाँ जो हमारे लोग हैं उनके निर्देशों का पालन करें ताकि उनको हम तुरंत वहाँ से पार करा सकें।
1: राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के आगमन के साथ ही कृषि कार्यों में तेजी आ गई है और किसान बड़े उत्साह के साथ खेतों में जुट गए हैं। वहीं बीते दिनों जिले में आए भीषण तूफान और बारिश के कारण आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त रहा। तूफान के कारण जगह जगह पेड़ गिरने तथा बिजली के पोल टूटने से कई दिनों तक लोगों को भिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन और बिजली विभाग की तत्परता से स्थिति को सामान्य कर दिया गया। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी के साथ श्री मोदी ने भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इस अवसर पर उनके समर्थकों और एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल को सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण के रूप में देख रहे हैं। वहीं 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना की गई। आदमपुर स्थित मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। वहीं भोलानाथ मंदिर में भव्य श्रृंगार पूजा के साथ 1200 दीप प्रज्वलित किए गए। इस अवसर पर नगर विधायक रोहित पांडे, जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन की कामना की। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेले को भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। बीते दिनों जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अजगैबीनाथ धाम घाट का निरीक्षण किया तथा जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर नगर विकास मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा भागलपुर पहुंचे और श्रावणी मेले को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मेले की भव्यता, लाखों की संख्या में पहुँचने वाले श्रद्धालु

0: की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश दिए। पिछले दिनों जिले के 13 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार बीएड सीईटी प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 7,166 परीक्षार्थियों में से 6,558 उपस्थित रहे, जबकि 608 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भागलपुर जिले में विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वन विभाग की ओर से सैंडिस कंपाउंड परिसर के स्टेशन क्लब के पास 50 से अधिक पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, वन विभाग के डीएफओ आशुतोष राज सहित कई पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया।
1: अभी आप सुन रहे थे भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विनोद कुमार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए नई मलिकेश्वर में गजल। कार्यक्रम है सुगम संगीत।

नई मलिके गाए इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। विषय है विदेश नीति।

0: आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये

0: एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद।
0: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किसमें गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
1: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इम्पोर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
0: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें, तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
1: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। भी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही है, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
0: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
1: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन

0: शौचालय, उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, सब परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहाँ चीजें, खास करके जमीन, बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना यह आबादी हो गई है, और हमें अनुमान यह है कि 2047 तक यह आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1,150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है, और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम वर्ग।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी 1-1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता, लेकिन जब

0: पास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत वन अमृत टू योजना चलाई, इसीलिए चलाई पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टीयर टू टीयर थ्री शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है वो है अर्बन चैलेंज फंड, तो अर्बन चैलेंज फंड में 1,00,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1,00,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2,00,000 रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी, तो 4,00,000 करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना, तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई। आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी,
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है, यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी, केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यही तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है, 1,05,00,000 लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं, 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको एक घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा

0: सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है, और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर ये पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया, और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई, और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं, लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जो बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री, तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो, तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन

0: करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूँ, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है। कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए, ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूँ, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए, ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं।
1: जी, पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है, 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था, और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है, और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है, और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेके चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है, और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति, और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: This is Akashvani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy. Through labor reforms, digitization, decriminalization of laws, under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction, from earlier the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So, I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
5: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors.

0: पूनम कुमारी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी

0: लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि इसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में

0: भारत एआई पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: दिशा सिंह टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2020 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है।

0: लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा
4: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्दे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership. Inc. 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. Friends City of Ovion gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. and in the FIFA World Cup space.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। DRDO ने अंदरून मुल्क तैयार तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी

0: झलक देखने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर एवियान में शुरू हो रहा है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों G7 मुल्कों के रहनुमाओं का बाजाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। भारत, ब्राजील, जनूबी कोरिया, कीनिया और मिस्र को इस सरबरा इजलास में शराकतदार ममालिक के तौर पर मदु किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस की सदारत के तहत G7 सरबराह इजलास ने रवां साल के लिए कुछ कलीदी तरजीहात का इंतखाब किया है। इनमें मैक्रो मईशत के बढ़ते हुए अदम तवाजुन में कमी करना, मुश्तरका तरक्की को फरोग देना और बैन अल-अक़वामी शराकत दारी की तजदीद करना शामिल है। तवक्को है कि तबादला ख्याल में हसास और मादनियाती अकदारी सिलसिले को मुस्तहकम करने, छोटे बच्चों को ऑनलाइन तहफ्फुज़ फराहम करने और अहम जोग्राफियाई सियासी बहरान को हल करने पर भी गौर व खौज किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कल एवियान पहुंचेंगे। वजीर आजम फ्रांस का ये दौरा सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत पर कर रहे हैं। वजीर आजम का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये इजलास आलमी रहनुमाओं से मिलने का एक प्लेटफॉर्म है, जहां वो सिर्फ भारत के मामलात ही नहीं बल्कि आलम जुनूब के भी मामलात पर बातचीत कर सकेंगे। भारत में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार शिरकत अमन, सलामती, तरक्की और पायदार माहौलियात के शोबे में भारत के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी करती है। फ्रांस के एवियान से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से मुल्क में तैयार करदा लंबी दूरी तक जमीन पर वार करने वाले क्रूज मिसाइल LRLACM की आजमाइशी परवाज कामयाबी से अंजाम दी। इस क्रूज मिसाइल के सभी जेली निजामों के मुल्क की मुख्तलिफ DRDO लेबोरेटरियों और भारतीय सनअती शराकतदारों के जरिए तैयार किए जाने के साथ ही ये मुकम्मल तौर पर मुल्क में तैयार किया गया मिसाइल है। वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल ने मिशन के सभी मकासद हासिल किए और भारत की लंबी दूरी तक दुरुस्त निशाने पर वार करने की अहम टेक्नोलॉजी पर मबनी सलाहियत को साबित कर दिया। वजारत ने मजीद कहा कि यह कामयाब तजुर्बा आत्मनिर्भर भारत और एक मजीद मजबूत कौमी दिफाई इको निजाम की जानिब एक और अगला कदम है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने LRLACM की कामयाब आजमाइशी परवास पर DRDO टीम और सनअती शराकतदारों को मुबारकबाद दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क के शहरी हवाबाजी के शोबे में एक नुमाया संगे मील तय करते हुए आज उत्तर प्रदेश के जिला जेवर में नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों का आगाज हो गया। आज सुबह लखनऊ से आने वाली इफ्तिताही परवाज के साथ इंडिगो नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यह हवाई अड्डा दिल्ली के वसी इलाके और मगरबी उत्तर प्रदेश को मुल्क और दुनिया के दीगर हिस्सों से जोड़ता है। यह आलमी मेयार का हवाई अड्डा मुसाफिरों को जदीद और जामे तिजारती सहूलियात और खिदमात फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इब्तदाई मरहले में यहां से घरेलू परवाजें चलाई जाएंगी, नीज आइंदा महीनों में बैन अल-अक़वामी परवाजें चलाए जाने का भी मंसूबा है। इब्तदाई तकरीब से खिताब करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा कि पहले मरहले में यह हवाई अड्डा 1,20,00,000 मुसाफिरों को हवाई सफर की सहूलियात फराहम करेगा, जो कि हवाई अड्डा मुकम्मल होने के बाद तवक्को है कि 7 करोड़ मुसाफिर सालाना यहां से सफर कर सकेंगे। आज पहली परवाज के जरिए सफर करने वाली एक मुसाफिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए हवाई अड्डे के आगाज पर खुशी का इजहार किया। मुस्तकबिल में मुसाफिरों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दस्तियाब होंगी जो बजट और सफरी खिदमात को पूरा करेंगी। इस हवाई अड्डे पर फजाई माल बर्दारी की खसूसी सहूलत भी दस्तियाब होगी, जो इब्तदाई तौर पर 2,00,000 मेट्रिक टन सालाना होगी, जिसे बाद में 15,00,000 मेट्रिक टन तक बढ़ाने का मंसूबा है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: अमरीका और ईरान की जानिब से मगरबी एशिया जंग को खत्म करने के लिए एक माहदे के ऐलान करने के कुछ घंटों बाद ही इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कार्थ ने ऐलान किया है कि इसराइली फौज सरहदों पर अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगी। इसराइल की सलामती की पॉलिसी की बात करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि IDF इसराइली शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए लबनान, शाम और गजा में सलामती जोन्स में गैर मुहैना मुद्दत के लिए तैनात रहेगी। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि इसराइल ने फौजों की वापसी के लिए बैन अल-अक़वामी वक्त की मुद्दत पर अमल करने के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने इनकार से बराह रास्त मुत्तला किया। भारत ने मगरबी एशिया में लड़ाई खत्म करने और आबनाए हुरमुस को खोलने के बारे

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत

0: और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया। इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन खुल चुकी है। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आंख नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जय प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डाले तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जय प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंगरजना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी
0: जी। अनिता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपने आपको थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी
0: जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी, और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है, और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। जो अभी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा रहता है
0: जी,
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताए। नमस्कार जी,
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं। सिद्ध जी बताए।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है, तो आप हल्दी मेथी सौंठ ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें
0: जी।
2: तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है, तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें, तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछे क्या सवाल है आपका?
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ये सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा

0: आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो किसी हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा?
1: धन्यवाद रवि जी। आपका जो प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि शायद लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से

0: दबाना छोड़ना सांसों के साथ कर सकते हैं, और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर दो घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
1: जी,
0: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ होगा। और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां?
2: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
1: जी,
2: तो फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है, और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो एक हंसी की बात आ जाती है
1: सभी के लिए।
2: हाँ, लेकिन जैसे ही हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
1: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नीमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका?
3: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नीमा बोल रहा हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हेतु बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है?
1: जी बताएं।
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
1: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
1: जी।
2: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
1: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए?
0: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें मिशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, और रात में ब्रश करके सोना है
1: जी,
0: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
1: वो निकल जाती
0: है, वेस्ट कर देते हैं, तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं, रोटेशन के साथ हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है, इसके अंदर घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे?
4: जी धन्यवाद। मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या आंखें को कम दिखाई देता है, तो मैं विशेषज्ञ से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
2: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊँ, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है, और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
2: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले, तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
5: हेलो नमस्कार, मैं मुकेश जी।
1: जी नमस्कार,
5: दोनों विशेषज्ञ मेरा नाम नमस्कार है
1: जी। सवाल
5: मेरा साथ मिले, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है।

0: डिस्टर्बेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनिता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
1: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है
0: जी,
1: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से विजय कुमार। विजय जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: मुकेश कुमार जी,
0: जी क्या सवाल है आपका?
2: कुमार जी नमस्ते।
0: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
2: जी और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
2: मेरा पहला सवाल यह है कि वेट बहुत ज्यादा है
0: जी,
2: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
0: जी। जी
2: और योगा करने से वो ये होगा
3: वेट के लिए? विजय कुमार जी सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें। पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीजों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है। उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफी लाभदायक है। और बैठ करके कटी सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: अनिता जी एक मेरे दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है? क्या दोनों को करना आवश्यक है?
1: ये दोनों योग के ही अंग हैं
0: जी,
1: प्राणायाम और आसन
0: जी।
1: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजेड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूँ, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
0: जी।
1: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
0: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से मोहन पासवान। मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
4: जी धन्यवाद, प्रणाम इकट्ठे सर
0: जी, बताइए।
4: सर जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
1: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि स्वास्थ्य, सॉरी कुछ
0: जी,
1: है ना, तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया, और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
0: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनिता कौशिक और कमल किशोर। तो अनिता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने

0: का कोई युग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो बड़ी थकान सी होती है।
1: देखिए, आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
0: जी।
1: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में। जो कंप्यूटर में बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातः काल में यदि थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे, तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी, आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
0: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, रशीद जी।
2: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए आप भी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
0: प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं। जी, सवाल पूछिए।
2: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
3: धन्यवाद ऋषि जी। बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो। शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर नाम लगे ऐसे आंखों में कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनिता जी ने पहले ही बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पे लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
0: और अनिता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
1: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
0: जी,
1: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और अपना जो ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं
0: जी,
1: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
0: बिल्कुल करेंगे तो होगा। कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
3: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं
0: जी,
3: पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने। तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
0: जी।
3: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
0: जी।
3: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण को जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना बहुत ध्यान लग जाते हैं, उनका पढ़ाई का नुकसान होता है
0: जी, जी, जी।
3: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव यह है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
0: जी।
3: और खाना जो खाया वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का, तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
0: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। क्या सवाल है आपका?
4: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
0: बहुत अच्छा सवाल,
1: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेटकर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो भी कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल

0: कपालभाति नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है, तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
1: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, बटरफ्लाई रेगुलर करना है, बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है, इस बारे में आप।
1: धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
0: घर घर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए, जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है, तो मैं वहां बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीजों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती है। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
3: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता, बॉडी के अंदर बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है, बॉडी एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और राय बरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी।
4: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है, और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
3: जी रामाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया, ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी दंड बैठक, जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत बात है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जारी नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी, तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका।
5: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, और मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ ट्रेनर हो गए या बाबा रामदेव का एक अलग रहता है, और बाकी जो ट्रेनर का रहता है जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल से रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर, हम लोगों ने ये इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर या 10 दिन या 1 महीना करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या। जी यही सवाल था।
0: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है, आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं, तो रेगुलरिटी

0: बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके उस संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
0: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें। जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं, वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं। रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं। और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
1: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
2: जी, बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसको एक्टिवेट करता है भ्रामरी प्राणायाम। के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी किया करें, जैसे बदल बदल के क्या करें। और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल ऐप की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है। तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
1: और श्रोताओं, घर की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है eirnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा। तबले पर सत्यनारायण सिंह और इनके साथ सारंगी संगत है रोशन अली का।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं फिल्म इज्जत से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीत साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

फिल्म शर्मिली में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। लीजिए, अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को, जो है फिल्म सागर से।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612-22-22-500 एवं 0612-40-26-349। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0612-22-22-500 और 0612-40-26-349। रिकॉर्डिंग की तारीख 17 जून 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

0: मुकेश और लता मंगेशकर के गाए फिल्म धरती कहे पुकार के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचे।

0: पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense, following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight.